0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow, FM.
4: Only tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: It's
9: music never sounded better.
10: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.
12: You are listening 97.1 FM.

0: This.
1: It's commercial time.
2: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzzah 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: चलो कोई
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: Hits.
9: Music never sounded better.
10: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, sat sri akal, adab, sawain, izi bakar and dear listeners of Radio Fada 97.1 FM. Here is your host Nasir Khan presenting a live and definitely it's a very lively show. Ji naam hai Good Morning, Good Wali Morning Nottingham. तो समझाएं सुने बताए कैसे हम सब लोग के फहवाल मागंग दंगू मागा इन वर्तनम सुगम सुगम मानु के इम छो बोंजोर की हाल चाले मेरा ते तुआडा जी जैसे आप बेहतर जानते हैं ना दिस इज लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंगम 97.1 एफएम प्रोवाइडिंग योर फ्रेश ब्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट So stay tuned, stay positive, stay energetic with Fada 97.1 FM and Dab. Dab पे आप हमें कैसे फजा के नाम से सर्च करेंगे और डेफिनेटली उसके बाद आप हमें ऐप पे भी सर्च कर सकते हैं, बल्कि ऐप डाउनलोड करके हमें लाइव सुन भी सकते हैं ना. ऐप डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे फजा रेडियो या रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ होगा फजा लिखा आपके सामने आएगा गोल्डन पेज या येलो कलर में. अक्सर मैं कहता हूं ना कि डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है और उसके बाद जब आप उसको डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे तो फिर प्ले करने के बाद आपको मिलेगा ये सुनने को गुड मॉर्निंग नॉटिंगम.

जी तो स्वामी बताइए फिर कल का दिन कैसा गुजरा और क्या आपकी पॉजिटिव एनर्जीज रही, क्या एंटरटेनमेंट रही और किस तरह का दिन गुजारा आपने, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा मेरे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर, डायल नंबर के सेव करना पड़ेगा और फिर ही व्हाट्सएप आएगा और व्हाट्सएप जब आ जाएगा तो नंबर आपको पहले मैं बता देता हूँ 0115710971। ये है मेरे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं और आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के इस खूबसूरत से सफर में। नॉटिंघम शहर के जितने भी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है और जितने भी खूबसूरत से लोग, खूबसूरत चेहरों वाले, खूबसूरत दिलों वाले मेरे साथ हैं, मौजूद हैं, आपको वेलकम किए देता हूं, स्वागत है आपका। आपको ये भी बताई देता हूं हमारे बाकी जितने ट्रांसमिशन हैं, जितने इवेंट्स हैं और जितनी प्लानिंग है उनके बारे में जानने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट विजिट रेडियो फौजा.co.uk।

0: अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म पे भी और एहसास दिला सकते हैं अपने होने का। लेकिन सामीन हमारे दरमियान अभी हायल होने जा रही खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पर रहती है आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 एफएम एंड डैब एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: It's
11: music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम। ये स्वागत है जनाब उन तमाम समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे अल्लाहजी हमारी ऐप पे। एक बार फिर से मैं तरीका बताए देता हूँ उन साहिबान के लिए, उन महिलाओं के लिए और उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून अप किया 97.1 एफएम पे। जनाब ऐप को डाउनलोड करने का तरीका क्या है? ऐप को डाउनलोड करने का तरीका जनाब आपने जाना है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां रेडियो फजा या फजा रेडियो टाइप करेंगे और वहां पे जब आप आपको फजा लिखा हुआ एक पर्पल कलर में बैकग्राउंड के साथ, पर्पल बैकग्राउंड के साथ येलो पेज या गोल्डन कलर में फजा लिखा आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और जब आप प्ले करेंगे तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम आपके लिए मौजू होगा। लेना वे सबसे पहले लेट्स डिस्कस टुडेज वेदर रिपोर्ट। आज की क्या सूरत हाल है? बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आशिकाना सा, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा मौसम है। ऐसा मौसम बेसिकली काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारे स्पेशली यूके में या नॉटिंघम शहर में, देख लें हम इस मौसम को लेके ना, मतलब 78% व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़े से डल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हमें सूरज की हीट कम मिलती है, रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है, वाइटामिन डी की कमी है, मशरूम्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ज़्यादातर हमारा जो जोर रहता है वो फास्ट फूड्स की जानिब रहता है। लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया और 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया आज का नॉटिंघम शहर का टेम्परेचर। लाइट क्लाउड एंड मॉडरेट ब्रीज। आपको इस वक्त ये बताता चलूं कि फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल 0% है, ठंड थोड़ी सी है, अच्छा मौसम है, कदरे बेहतर है, लेकिन इवनिंग 7 to 8 PM एंड टिल 11 PM फिजा में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है 87% तक बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बतदरीज कमी आ जाएगी, अल्लाह ऑलमोस्ट 12 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रात को आ जाएगा और उसके बाद बारिश के भी हत्तुल इम्कान चांसेस हैं। और आपको ये बता देंगे ना नाइट के हवाले से, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने नॉटिंघम शहर से बाहर जाना है या फिर आपकी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, ओरिएंटेशन है या किसी से मिलने जाना है, तो फिर भी आपको ये बताता चलूँ कि आज रात के हवाले से जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है। दिस इवनिंग विल बिकम आवर कास्ट विद स्पेल ऑफ रेन मूविंग इन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ लीजिए किस समय जाना है, किस समय निकलना है, ये भी आपने देखना है। ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स रेन विल फिजल आउट and skies will tend to clear towards dawn.

लें जी सामीन, मौसम की सूरत हाल आपने जांच ली 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि आज का जो मैसेज है वो आप सॉरी आज का मैसेज मैं क्या कह रहा हूँ, मौसम ज्यादा असरअंदाज हो गया है, थोड़ा सा माइंड में अभी तक ना वो खुमार और रोमांटिकिज्म थोड़ा सा छाया हुआ है और एक पॉजिटिविटी भी है कि आज का दिन कैसे प्लान किया है और मैंने क्या क्या करना है। खैर अगर ये सारी बातें मैं आपको बता दूं तो फिर आप मुझे कैसे बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा मुझे 01157100971 पे मैसेज करके। ये हमारा व्हाट्सएप का लाइव व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए और फिर ये बताइए कि आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं। टॉपिक है जनाब आज का बड़ा जबरदस्त था, फेवरेट टॉपिक आपका मेरा हम सब साउथ एशियंस का क्रिटिसिज्म जी, तंकीद। बिल्कुल जी, क्रिटिसिज्म पे हम बात करेंगे और मेरी कुछ राय है, मेरे कुछ विचार हैं, आपकी अगर कोई विशेष टिप्पणी है, आपके कोई विचार हैं तो अपने विचारों को मेरे विचारों के साथ मिलाएं या अपनी असवाज को मेरी असवाज के साथ मिलाएं ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरे जो अल्फाज हैं वो आपकी दिमाग की सतह के साथ तेजी से दौड़ रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं और मुझे अंदाजा हो कि मैंने तनकीद करनी है या लोगों को रिप्लाई करना है। एनीवे जोक्स अपार्ट, आपको पता है गपशप तो हमारी साथ साथ चलती रहेगी, एंटरटेनमेंट भी रहेगी। कहते हैं कि जनाब सबसे पहले एक जबरदस्त ही कोट है अशफाक अहमद साहब, बड़े जबरदस्त ये लकारी हैं, ऑथर हैं, थे, अल्लाह की जात ने अपने जन्नत फरदोस में आला मुकाम अदा कर लिया और ही के रहमत करे। कहते हैं कि क्रिटिसिज्म के लिए, तनकीद के लिए होना इल्म का जरूरी है, इनका होना बेहद जरूरी है, जबकि नुकताचीनी के लिए जहालत का होना ही काफी है। एक और एक साहिब हैं वैसले लैंडले, ये कहते हैं वैसले ही कहते हैं कि इसकी मैं अब उर्दू में बता देता हूँ, अगर तनकीद करनी है यानी इफ यू वांट टू हैव क्रिटिसिज्म तो नरम लहजे में करें, यानी आहिस्ता लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा जमीर जगाता है जबकि आपका उकताया हुआ लहजा, सख्त लहजा अंदर से अनाह को जगा देता है। ये दो चीजें हैं, ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को लेकर हम साथ चलेंगे और आज के जो मुख्य समाचार हैं वो यही हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और ठीक 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के इस खूबसूरत से सफर में एक बार फिर से सबको जनाब गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो टोटली बात चेंज हो चुकी होती है, वो बिल्कुल मोल्ड होकर एक डिफरेंट शक्ल में जब किसी और बंदे के पास पहुंचती है ना सामीन, तो फिर बंदे के पास एक ना 10 राय जो होती है ना बंदे के माइंडसेट में, यानी मेरे पास अब वो बात पहुंची है ना 10 बंदों में से घूम के, यार एक्स वाई सी मजीद अखलाक फला नामी आदमी था, उस बंदे को इसने ये मशवरा दिया और इसने कहा फला बंदे के पास जाओ, उस बंदे को कोई डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि वो कोई उसे जानता नहीं, मैं उसे जानता हूँ या कोई और बंदा उसे जानता भी नहीं है शायद, बिल्कुल जनाब आपके मैसेजेस आ रहे हैं 0115 7100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हैं, रब्ता कर सकते हैं।

0: सामीन, अब ये जो बात जब हमारे तक पहुंचेगी जी, थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम वेलकम वेलकम, बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जी, हमें ज्वाइन किया है लिस्पा, थैंक्स अ लॉट, आपको भी इन बातों की समझ आती है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी लिसनर है ये हमारी नब, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट गर्ल फ्रॉम NG6। एनीवे जनाब, थैंक यू वेरी मच, आप ट्यून अप हैं और आपकी अच्छी फैमिली, मामा भी और बाबा भी आप ड्राइव कर रहे हैं जी, बिल्कुल सर, अगर आप ड्राइव करते हो मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, लेकिन पे आप अगर हमें सुन रहे हैं फजा के नाम से तो फिर इट्स ओके, अच्छी गाड़ी में अच्छा सफर कर रहे हैं, खूबसूरत से मनाजर देख रहे हैं नॉटिंघम शहर के, एनीवे डिस्कस हम कर रहे थे तनकीद के हवाले से, तो फिर वो जो एक पॉजिटिव तनकीद का पहलू है तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने आएगा, और वो ऐसे आएगा कि 9 से 10 बंदों में जब वो बात घूम के आप तक पहुंचेगी तो आपके पास कुछ गोल्डन वर्ड्स पहुंचेंगे, यार वो बंदा कमाल है, वो बंदा हर किसी की हेल्प करता है, उस बंदे ने ये कर दिया, उस बंदे ने वो कर दिया, और उस बंदे ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था, मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी 6-7 माह से मैं स्टक था, और उसके बाद फला इब्ने फला ने मुझे फला इब्ने फला के पास रेफर किया, और उसके बाद जब उसने ये काम किया तो मैं क्या बताऊं यार, खर्चा भी कोई नहीं हुआ बिल्कुल, यार वो तो कमाल है यार, वो तो बल्कि कहते हैं ना वो पुरुष नहीं बल्कि वो महापुरुष है। अब जब ये चीज आप तक पहुंचेगी ना, जब ये चीज आप तक पहुंचेगी ये मजीद खूबसूरत होके पहुंचेगी, लोग तारीफ में या पॉजिटिव तनकीद में जब आपका सामना करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक घुमा फिरा के ना आपको खूबसूरत अल्फाज के साथ कुछ चीज डिलीवर करेंगे। अब उसमें क्रिटिसिज्म का पहलू कहां पे आएगा, उन 10 से 12 या 15 कमेंट्स में से 1 या 2 कमेंट्स ऐसे होंगे, वेरी वेल डन नासिर खान, यू हैव डन ग्रेट जॉब, फलां बंदे ने रेफर किया, आप फलां बंदे के पास के बड़ा जबरदस्त काम हुआ, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते ना, आप इसे खुद ले जाते उस बंदे के पास और वहां जाके इसकी सारी हेल्प करते, क्योंकि उस बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है या इंग्लिश इसकी कमजोर है या ये इन मामला को समझ नहीं सकता, तो मैं समझता ज्यादा बेहतर होता, बहरल ऊपर वाला आपको इसकी भी जजा दे, नेक्स्ट टाइम मुझे भी बताइएगा उस बंदे का, मेरा भी ये काम है ये काम है। अब देखिए ये जो पहलू है ना बीच में एक, आपका उसके साथ जाना ये पॉजिटिव तनकीद है, और आप क्या रिप्लाई करेंगे, हाँ यार डेफिनेटली आई नो वेरी वेल, बिजी होता हूँ, लाइफ बिजी है, लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें मुझे खुद जाना चाहिए था, जाता तो मैं भी मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेते इस चीज़ पे, एनीवे नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, या नेक्स्ट अगर मैं किसी को रेफर करूंगा तो फिर डेफिनेटली मैं खुद जाऊंगा ताकि मैं मजीद लोगों के काम आ सकूं। अब ये जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना, ये पॉजिटिव तनकीद, यानी आपने एक रास्ता निकाला, उस रास्ते को लेके आप साथ चले, और फिर आपने कहते हैं ना कि मैं तो चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया, फिर ऐसी खूबसूरत कम्युनिटी का, हमारे नॉटिंघमशायर की जैसी कम्युनिटी है, जितनी हमारी साउथ एशियन खूबसूरत और प्यारे दिल के लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी का एक माहौल बनता है, एक एनवायरमेंट बनता है, और उस एनवायरमेंट को आप सुनते हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के लाइव शो में। जितने ध्यान से आप मेरी बात सुन रहे थे ना, तो बीच में ये हल्का सा ना वो चुटकुला छोड़ना जरूरी था कि आपको बताता चलूं कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम की खूबसूरत सफर, खूबसूरत से सफर में जो गाड़ी है वो अपने मंजिले मकसूद की तरफ रवान दवा है, जिन जिन लोगों ने ट्रैम में बैठे हुए हैं मेरे पास आ रहे हैं, जिन्होंने सबे पे चढ़ना है ना, वो आप शामिल हो जाए, सवार हो जाए, ताकि हम अपनी गाड़ी को अपनी मंजिले मकसूद की तरफ लेके चलें। बाकी ना ये बात हमारी तनकीद पे क्रिटिसिज्म पे चलती रहेगी, अभी आगे भी हमारे पास में नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आएगा वो होगा ना पर्सनैलिटी ऑफ द डे का, हम मोटिवेशन रखेंगे उसमें, देखेंगे लोग हंसते कैसे हैं, खूबसूरत लोग हंसाते कैसे हैं, लेकिन उनके पीछे गम कैसे कैसे होते हैं, ये चीज डिस्कस होगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म के तराजू में, इसलिए मैं कहता हूं स्टे ट्यून्ड स्टे पॉजिटिव स्टे एनर्जेटिक विद फला 97.1 एफएम, योर होस्ट नाज़िर खान विल बी राइट बैक आफ्टर द,
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7-7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Yapır English or Arabic.
1: Fazan 97.1 FM.
0: Ho gaya na kamal.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Fazan 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फॉर 97.1 एफएम में लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदा गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम है जी उन समाधों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे FM पे या फिर डैप पे जनाब हम अवेलेबल हैं, फजा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल, और फिर जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, प्ले करेंगे तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी मैं ही कहता हुआ आपको मिलूंगा। All the way from Nottingham, जी बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट है हमारी और इसके अलावा खूबसूरत सफर गुड मॉर्निंग Nottingham का है और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। टॉपिक है जी आज हमारा क्रिटिसिज्म, जिसमें हम दो पहलुओं पे बात करें। पहला पहलू है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव क्रिटिसिज्म की भी एग्जाम्पल आपके सामने रखी और पॉजिटिव की भी आपके सामने रखी। मसला जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है और एंटरटेनमेंट है, ये तीनों सेगमेंट हमारे साथ साथ चलते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब मैं कम्युनिकेशन आपसे करता हूं तो फिर आप मेरे साथ करते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन आपके मैसेजेस आए हैं, नाम नहीं बताया आपने, लेकिन थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल जनाब आप भी अप्लाई कर सकती हैं। आरजे बीना खान हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच आरजे, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk, वहां पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली आप आरजे हैं, बातचीत करना जानती हैं, तो डेफिनेटली आप आगे भी पहुंचेंगे और लोगों तक भी अपने मैसेजेस पहुंचाएंगे। और भी जितनी हमारी कम्युनिटी मुझे सुन रही है साउथ एशियन कम्युनिटी में, जो बंदा भी ये समझता है या ये सोचता है कि वो अच्छा स्पीकर है, बोल सकता है, या कोई भी फील्ड हो आपकी, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, आप आए हमारे पास और आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें एज ए ब्रॉडकास्टर, और उसके बाद आपको हम मौका भी देंगे, चांस भी देंगे, जैसे कि हम लोग आपके साथ मौजूद हैं। हमारी कम्युनिटी वर्क है और कम्युनिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, साउथ एशियन कम्युनिटी को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, मजीद इसमें निखार उभारने के लिए, सिविलाइज करने के लिए आपके साथ है नम फजा 97.1 एफएम की पूरी टीम। जी तो तनकीद की हम बात कर रहे थे और तनकीद के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव दो पहलू थे, लेकिन ये जो सेगमेंट है बड़ा जबरदस्त सेगमेंट है, सेगमेंट है पर्सनैलिटी ऑफ द डे का। क्रिटिसिज्म जो हमारा टॉपिक है, इस पर तो हम बातचीत करते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, और 01157100971 ये वो नंबर है जिस पर अपने विचार आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई विशेष टिप्पणी है या कोई आपके पास मेरी बातों के अलावा, यानी मेरी अस्वाद से हट के आपकी सोच मेरे साथ नहीं चलती, आप भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, तनकीद कीजिए। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ मुझे भी बताइए, क्योंकि इंसान है, बहसीत इंसान बींग ह्यूमन, हर इंसान को गलती का हक है, हो जाती है गलती से मिस्टेक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम, एंजॉय कीजिए जबरदस्त सेगमेंट, एंड द सेगमेंट इज पर्सनैलिटी ऑफ द डे। जनाब कौन सी पर्सनैलिटी है आज, बूझो तो जाने। हालांकि जब मैंने दूसरा अपना जो सेगमेंट है, दूसरा चंक जब मैंने लिया तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने हल्की सी बात बताई थी आपकी, जो हमारे आज के जो पर्सनैलिटी है जिनको मैंने सेलेक्ट किया, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे दर्द कितना है, मेहनत कितनी है, या उसके पीछे गम कितने छुपे हुए हैं, इन चीज़ का अंदाज़ा जब आप ये पर्सनैलिटीज को सुनते हैं ना, इनकी लाइफ सुनते हैं, यानी पूरी लाइफ इनकी 3 से 4 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, कि एक ऐसी मोटिवेशन पर्सनैलिटी आपके पास आए कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे हमारे पुरुष, बहुत सारे ऐसे हमारे अहबाब, बहुत सारे हमारे हल्का यारा के ऐसे मेंबर्स जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टूट चुके होते हैं, यानी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती या उनको बंद गली नजर आती है, तो फिर ऐसी जो मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज हैं ये हमारे सामने आती हैं, लेजेंड्स हैं, और इनको सुनिए और अपनी जिंदगी को मजीद मोटिवेट कीजिए। अगर इस हवाले से आपकी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जिंदगी को प्लान कीजिए आज के दिन के हवाले से, और आज के दिन ये कोशिश कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनमें से कम अज कम एक का हल आज मैं जरूर निकालूंगा, और अगर ये आपने कर लिया तो यकीन करेंगे 7 problems will be solved in 7 days and in 1 week, तो सोचे कि 30 problems अगर एक माह में आप सॉल्व कर लेते हैं तो मसले खत्म हो गए, मसले रहेंगे नहीं, जो मसले नहीं रहेंगे तो मसाइल कहां से आएंगे। ले जी एंजॉय कीजिए सेगमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द डे, एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सेगमेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं लेट्स से वाटर की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।
1: Rowan Atkinson was born in a middle-class family. He suffered terribly as a child because of his stuttering. He was also teased and bullied at school because of his looks. His bullies thought he looked like an alien. He was soon marked as strange and became a very shy, withdrawn kid who didn't have many friends. So he dived into science. One of his teachers said, "There was nothing outstanding about him. I didn't expect him to become a fantastic scientist." But he proved everybody wrong and got admitted at Oxford University. During his days in Oxford, he started falling in love with acting, but couldn't perform due to his speaking disorder, so he got his master's degree in electrical engineering before appearing in any movie or TV show. So after getting his degree, he decided to pursue his dream and become an actor. So he enrolled in a comedy group, but again, his stammering got in the way. A lot of TV shows rejected him, and he felt devastated. But despite the many rejections, he never stopped believing in himself. He had a great passion for making people laugh, and he knew that he was very good at it. So he started focusing more and more on his original comedy sketches, and soon realized that he could speak fluently whenever he played some character. "I found that when I played a character other than myself, the stammering disappeared." But even though he found a way to overcome his stuttering, he also used it as an inspiration for his acting. While studying for his master's, Rowan Atkinson co-created the strange, surreal, and non-speaking character known as Mr. Bean. Even though he had success with other shows, Mr. Bean made him globally famous. So despite all the obstacles he faced because of his looks and his speaking disorder, he proved that even without a heroic body or a Hollywood face, you can become one of the most loved and respected actors in the world. Today, he has a net worth of $130 million, and it's one of the most popular actors and comedians in the world. The motivational success story of Rowan Atkinson is so inspiring because it teaches us that to be successful in life, the most important things are passion, hard work, dedication, and never giving up. Because without caring about our feelings and weaknesses,

0: about the past and feeling embarrassed for your failures and weaknesses. It's impossible to reach success without facing failure. Setbacks and failures are inevitable in life. We can't prevent them from happening, but we can choose how to handle them. No one is born perfect. There is not a single person on this planet who hasn't failed at something. Don't be afraid. People can accomplish amazing things every day in spite of their weaknesses and failures. So go and do the best you can with the one life you've got. So, what's your story?
1: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपको मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए तो जनाब मैंने इन व्यक्ति का नाम अनाउंस नहीं था किया इसलिए नहीं था किया कि जब आप ये स्टोरी सुन लें मैंने हल्का सा हिंट इसलिए दिया था कि जनाब ऐसे लोग जो हंसाते ज्यादा हैं उनके ऑब्स्टेकल्स कैसे होते हैं उनकी परेशानियां कैसी होती हैं ये भी आपके सामने होता है ये भी आप जानते हैं ये भी आप पहचानते हैं इसीलिए थोड़ा सा ना वो बीच में क्या कहते हैं जरा एक आउटसोर्स एक लेवल रखा कि अगर आप देखते हैं या सुनते हैं या पहचान लेते हैं कि आप डेफिनेटली किसी चीज को समझने के लिए या इस तरह के ये बंदे बहुत हंसाते हैं तो हो सकता है मिस्टर बीन आपके जहन में आए तो जनाब रॉबिन एटकिंसन बेसिकली उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने लोगों को हंसाया और भी उनके बहुत सारे टीवी शोज हुए लेकिन उनमें हक लाने की आदत थी ये करने की आदत थी तो बेसिकली ये जो आदत थी इसी को उन्होंने अपनी पावर बनाया साइलेंट कॉमेडी कमाल कर दिया इस बंदे ने और इस बंदे ने वो जादू करके दिखाया वो चीज करके दिखाई हमारे तमाम लिसनर्स को ये चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मिस्टर बीन इज फेमस बिकॉज ऑफ द हिज साइलेंट कॉमेडी यानी कोई बात नहीं की और सिर्फ इंप्रेशन से लोगों के दिलों में घर बनाना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग तो अक्सर समीन क्या होता है कि जो आपकी सबसे बड़ी नाकामी होती है जो लोग समझते हैं जिसको जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं आपकी जात में हम बजाय इसके कि उस पर रिएक्ट करें बेहतर है उस पर रिस्पॉन्ड करें कि जो रिएक्ट करने वाला बंदा होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका रिस्पॉन्ड भरपूर होगा खूबसूरत तरीके से होगा और उसके बाद आपकी जिंदगी में बदतरीज एक ऐसे लेवल आएंगे ऐसे मोड़ आएंगे और ऐसी जगह आएंगी जहां पे वो शायद लोग भी मेरे साथ मौजूद है फाखरा जी बहुत शुक्रिया इन कर चुकी हैं सुन रही हैं आप वो कहते हैं ना कि अभी राह में कई मोड़ हैं कोई आएगा कोई जाएगा जिसने तुम्हें दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो यूं ही बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो ये गजल की सच्ची किताब है इसे चुपके चुपके पढ़ा करो और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से अरे ये नए मजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो और ये खजां की सर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है ये तुम्हारे घर की बहार है इसे आंसुओं से हरा करो तो जनाब प्रवीण शाकर ऐसे ही गजल जनाब सामने आ गई नहीं बल्कि जहन में आई और मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूं तो बिल्कुल शायराना मूड नहीं है कोई शायरी वायरी का प्रोग्राम नहीं लेकिन गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको पता है तंजो मजा मोटिवेशन और उसके साथ साथ हमारी जो नाकामियां हैं उनकी एग्जीक्यूशन ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं इसलिए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम को मजीद गुड वाली मॉर्निंग आप लोग बनाते हैं जब आप ट्यून करते हैं 97.1 FM and dab with your host Nasir Khan in one and only show which is Good Morning Nottingham.

वाओ वाओ वाओ जी, एंटरटेनमेंट शुरू हो चुकी है। बहुत ही प्यारा मलयालम सॉन्ग है ये, कमाल के ट्रैक्स हैं, कमाल का मैशअप है। एंजॉय कीजिए क्योंकि एंटरटेनमेंट का भी सेगमेंट चलना है। अभी 5 से 7 मिनट तक आप एंजॉय करेंगे ट्रैक्स को, और ट्रैक्स उस पर रहेगी आपसे फिर से मुलाकात। क्यों? क्योंकि कमर्शियल ब्रेक आएगी। कमर्शियल ब्रेक से जब आप लोग वापस आएंगे तो गुड मॉर्निंग नौदिगम कहते हुए सुनेंगे अपने मेजबान आसर खान को। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एनर्जेटिक विद रेडियो फजा 97.1 FM एंड योर होस्ट, बी राइट बैक आफ्टर द ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ द एंटरटेनमेंट।

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
7: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
6: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम पे लाइव स्टूडियो से आपको मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जनाब एंटरटेनमेंट का सेगमेंट था हमारे दरमियान, हाई होती खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार में दोबारा आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपका स्वागत करते हुए। जनाब टॉपिक था आज का हमारा था, बल्कि है अभी भी, तनकीद यानी क्रिटिसिज्म। इस पे हम बात कर रहे थे, अपने विचार आपके ख्यालात और ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक है। एंटरटेनमेंट कैसी लगी आपको, कैसे ट्रैक थे, जैसा आज का मौसम था उस हवाले से बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडिंग ट्रैक्स थे और मजा आया मुझे भी सुन के। इनहमाक में महसूस होते हुए बिल्कुल खो गया था किसी की यादों में, बिल्कुल जनाब किसी की नहीं, अपने माजी की कुछ ऐसी झरोके हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि खूबसूरत प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होती है। यूनिवर्सिटी का सफ़र, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र, फिर यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र, जिंदगी सफ़र में कट चुकी, कहते हैं ना कटी जाती है सफ़र में जिंदगी, मगर हम सफ़र याद रहते हैं, दिल जले याद रहते हैं।

बेहद शुक्रिया जनाब उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया हो और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैसेजेस करने के लिए 01157100971 ये मेरे स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है। जनाब हमारी बहुत ही जबरदस्ती एक कमाल की आरजे और कमाल की खराज तहसीन पेश करने वाली फाखरा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है, वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने हमारी ना जितनी भी गुड मॉर्निंग की टीम है या जितनी भी हमारी रेडियो फजा की टीम है उसको बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। फाखरा जी बेहद शुक्रिया आपका और ये वॉइस नोट डेफिनेटली मैं प्ले करूंगा और करने लगा हूँ, लेकिन अगर आप भी ऐसे क्यों विचार रखते हैं या ऐसा कुछ सोचते हैं तो डेफिनेटली मुझसे रब्ता कीजिए या हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या क्या और कर सकते हैं।

0: लेकिन दिलों का सिलसिला जुड़ने ही वाला था, खराज तहसीन पेश होने वाली थी, लेकिन बीच में थोड़े से मेरे ट्रैक्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ना ये वॉइस नोट स्पेशली फारहा जी की जानिब से।
1: ये तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम की सदाएं आती हैं, ये नासिर जी की आवाज में ढेरों मोहब्बतें, ढेरों सलाम और ढेरों दुआएं लाती हैं। अहले नॉटिंघम की जानिब से बहुत शुक्रिया नासिर जी, और हम जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये एक प्रोग्राम ही नहीं, ये मोहब्बतों, अकीदतों और एहतराम का एक ऐसा 2 घंटे का सिलसिला है जो कि हर सुबह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कोई है जो रेडियो फजा 97.1 FM पर बैठकर हम सबको ढेर सारी इंफॉर्मेशन और ढेर सारी दुआएं देता है।
0: फाखरा जी थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी मोहब्बतों के साथ, इतनी अकीदत के साथ, जब सीनियर्स या आपके जो ऐसे मेंटोर होते हैं जब आपको ऐसे अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, खूबसूरत तरीके से इंसान लेके चलता है अपने शो को। बेहद शुक्रिया जनाब। और हमारे साथ आरजी बीना आप भी मौजूद हैं, थैंक यू, आप भी ट्यून अप हो चुके हैं। अखलाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशली उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लेके मैसेज करें। जी बिल्कुल अखलाक साहब, बेहद शुक्रिया आपका, जिसको भी आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं आतिका हमारे साथ मौजूद है, थैंक्स अ लॉट। ये जनाब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से हमें ट्यून अप कर चुके हैं, और स्पेशली फाखरा जी हमेशा ही हमें एक खूबसूरत सदाओं के साथ याद करती हैं। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सफर इसलिए खूबसूरत होता है समीन के आपका फीडबैक हमें मिलता है, इसीलिए ऐसे फीडबैक के लिए 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप उनसे राबता करेंगे और मैं शामिल करूंगा आपको अपने साथ अपनी लाइव ट्रांसमिशन में, विच इज वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

लेकिन जमीन, अब हमारा जो टॉपिक था क्रिटिसिज्म जो है बल्कि चल रहा है, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, कुछ ही टाइम रह चुका है, इसको भी टॉपिक को क्लोज करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया आपके साथ कि क्या होता है बेसिकली, और जो हमारा जो सेगमेंट था पर्सनैलिटी ऑफ द डे का, उससे हमने क्या सीखा। तनकीद बेसिकली क्रिटिसिज्म मिस्टर बीन बेबी की गई, रॉबिन एटकिंसन को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। लेकिन सबसे जो कमजोर चीज है ना आप, जिस पे लोग ज्यादा तनकीद करते हैं आजकल के दौर में, इस टेन्योर में आपको या इस एरा में, ऐसी तनकीद मिलना जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, मस्बत तनकीद बहुत कम मिलती है, जिससे आप कुछ सबक हासिल करते हैं। एक लम्हे फिक्रिया है कि 95% हमें जो तनकीद सुनने को मिलती है, जो क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, वो बेसिकली नेगेटिव होता है, या आप कह लें मनफी सोच के साथ होता है, या मनफी क्रिटिसिज्म होता है। लोग नाराज हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा उकताने की तरफ ले जाते हैं, लाइफ से तंग आ जाते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कि हम यहाँ तक कुछ लोग असरअंदाज होते हैं कि लोगों में उठना बैठना छोड़ देते हैं, सोशल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो मस्बत तनकीद होती है वो इंसान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे लेके जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर तनकीद करनी हो तो नर्म लहजे में करें, और सबसे बड़ी बात है कि तन्हाई में करें। अमोल अली का बड़ा जबरदस्त कौल है कि जिसने किसी को कोई बात समझाने की कोशिश की, ऊपर वाला कमेशी माफ फरमाए, तो अगर उसने उसको किसी महफिल में समझाया तो उसने उसको अपना दुश्मन बना लिया, अगर उसको तन्हाई में बताया तो फिर उसने अपना दोस्त बना लिया, अपना मेंटर बना लिया। जी बिल्कुल, ऐसी तनकीद जो आपको डिफरेंट तरीकों से आगे लेके जाने की कोशिश करे, या आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते तायुन कर दे, या कुछ आपको ऐसी पकटनियों पर ले जाए, कुछ ऐसी कहकशाओं से गुजारे कि जहां से गुजरते हुए आपको ये एहसास हो कि ये जो ऑब्स्टेकल्स थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये वक्ती तौर पर थी लेकिन इनको मैंने अबूर कर लिया है, तो फिर इंसान डेफिनेटली मोटिवेट भी होता है, एनर्जेटिक भी रहता है, और अपनी जो लाइफ है उसको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से गुजार सकता है। तो लिसनर्स, अगर आपका भी ऐसा कोई सोच है, ऐसी कोई विचार है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या नेगेटिव क्रिटिसिज्म को लेके, तो फिर हमारे साथ रब्ता कीजिए। 01157100971 ये सिर्फ फीडबैक के लिए है। अलावा जी कोई भी आप बिजनेस प्रमोशन के हवाले से, अगर कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी है जिसपे आप हमारे नॉटिंगम शहर में स्पेशली बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, जितनी भी कम्युनिटी है उनके लिए कोई सोशल एक्टिविटी आप करें, कोई इवेंट करें, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर कीजिए। इन तमाम बातों के लिए नाम हमारे साथ रहना आपका बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जितने भी हमारे इस वक्त लिसनर्स हैं वो हमें एक चीज़ पूछ रहे हैं, वो चीज़ ये है कि जनाब टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। जी बिल्कुल, टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम्स क्या है और किस प्रोग्राम के हवाले से आप पूछना चाहते हैं, मुझे अगर आप बता दें तो मैं उस प्रोग्राम की स्पेसिफिक टाइमिंग भी आपको बता दूंगा। लेकिन हमारी जितना भी स्केड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पे या सोशल के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा, टिकटॉक, उन पे आपको स्केड्यूल तो नहीं मिलेगा, लेकिन radiofaza.co.uk हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, प्रोग्राम के सारे स्केड्यूल्स वहां पे अवेलेबल हैं। और डेफिनेटली अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इस जबरदस्त सी कम्युनिटी में शामिल करना चाहते हैं और लेके आना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी दबी हुई आवाज को, अपनी दबी हुई इच्छाओं को, अपनी दबी हुई विचारों को, अपनी दबी हुई आवाज को, तो फिर दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। जितना भी हमारा कम्युनिटी वर्क है स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, इस खूबसूरत सी सिविलाइजेशन को मजीद सिविलाइज करने के लिए आप हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में हमारे साथ रहें, और बताइए कि जबरदस्त तरीके को मजीद निखारने के लिए आपकी जिंदगी में क्या कमी बेशी आती है, क्या उतार चढ़ाव आता है, या किस तरह आप ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हैं, उनको पॉजिटिव वे में किस तरह लेके चलते हैं।

0: तो इसलिए सामिन कोशिश कीजिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉयज को अकेले में समझाइए। अगर आप खूबसूरत सी जिंदगी गुजार रहे हैं, या आपकी फैमिली है, या आपका हल्का यारा है, या आप इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में बिजी भी हैं, तो फिर आपकी जो तनकीद है वो किसी को एक नए रास्ते पे चला सकती है। सिर्फ अल्फाज का चुनाव अच्छा कीजिए, उसके साथ साथ आपकी जो एहसासात हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपके दिल के अंदर छुपी हुई बातें हैं, वह अगर पॉजिटिव होंगी, वो अगर अच्छे तरीके से सुलझी हुई होंगी, सांझी हुई होंगी, गूंदी हुई होंगी इश्क के आटे में, या ये कह लें कि इल्म के समुंदर में गोता जन हुई होंगी, तो फिर डेफिनेटली वो तनकीद आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहलाएंगे और लोगों पे असरअंदाज भी होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना, स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैब। और एक जबरदस्त सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेट्स से वाटर की जानिब से, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इसके उस पार आपको और मेरा साथ थोड़ा सा टाइम के लिए, स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट इज राइट हियर।
1: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
0: लेकिन अब ये थी जबरदस्त सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंच चुकी है, अपने मेजबान नासिर खान को देनी होगी आपको इजाजत। आज के दिन के लिए ये था हमारा गुड मॉर्निंग नॉरिगम। कल जनाब नए जज्बे के साथ, नए ख्यालात के साथ, नए एहसासात के साथ और नए सवालात के साथ रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 एफएम। अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत। गुड बाय, गुड बाय।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंकिन रोड नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
9: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
10: जिवें बदलां दे ओले होया चन।
9: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
11: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन
12: रेडियो फजा 97.1 FM।

हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन. सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. सो एक एक करके मैंने कर दिया है आपसे शेयर. वेल, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. सिविल लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं क्योंकि आज के दिन में भी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, साथ ही साथ बहुत सी गॉसिप्स भी हैं. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ. सो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हमारे एक लिसनर ने हमें रिकमेंड किया था. सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अपने सभी लिसनर्स का ख्याल रखें. तो उनकी बिल्कुल फरमाइश थी कि इस गाने को प्रोग्राम में शामिल किया जाए. तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे.

0: Hello?
1: Hey. Hi. Did you find out?
0: I did. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुम क्यों करना चाह रहे हो? She's moved on. Big deal. I think you should as well.
1: Please. कब मिल रहे हैं?
0: आज रात, around 8.

0: guys, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? Well, thank you so much for suggesting us such a beautiful song. So, ये गाना काफ़ी पुराना है लेकिन still आज भी जब मैं इस गाने को सुनती हूँ तो मेरे माइंड में वही सिनेरियो सोचती हूँ जो कि उस टाइम पीरियड में हुआ करता था जब ये गाना रिलीज़ हुआ था. सो देखा आप सभी ने किस तरह से जैसे ही हमारा वक्त चेंज हो जाता है, सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और ज़िंदगी बिल्कुल एक मुख्तलिफ साफ़ियत से चल रही होती है. So, well, listeners, उम्मीद तो यही है कि अब तक हमारे mostly listeners ने अपने इस खूबसूरत दिन का properly startup ले लिया होगा. So, हमारे वो तमाम तरह listeners जो कि इस वक्त घरों से बाहर निकल चुके हैं, So, अगर आप drive कर रहे हैं, रास्ते में हैं या फिर आप अपनी destination के करीब करीब पहुंच चुके हैं, So, आप सभी के लिए बताती चलती हूँ कि अगर आप हमें ट्यून करना चाहते हैं तो आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं, वहां पर हमारा साथ दे सकते हैं. सो जल्दी से ट्यून कर लीजिए हमें और बनाइए इस सफर को, इस डेस्टिनेशन को मजीद खूबसूरत, मजीद मेमोरेबल, क्योंकि सब सुबह अच्छा लगता है जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और आप खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक सुने तो माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है. और साथ ही साथ हमारे वो तमाम लिसनर्स जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, आप सभी के लिए है बहुत ही हमदर्दाना सी एडवाइस. और वो एडवाइस ये है कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, उसका ख्याल रखिए. और हो सकता है कि आपकी हल्की सी लापरवाही किसी के लिए या आपके लिए बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है. सो एहतियात कीजिए, स्लो ड्राइव कीजिए. साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हमारी उन तमाम तर फीमेल लिसनर्स की. आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट के फॉर अ वुमेन कि आप डेली बेसिस पर घर से बाहर निकलें, जॉब करें या उसके बाद घर वापस आकर आप घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करें. सो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब आपके बच्चे हों, फैमिली हो तो फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है, बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है. सो सल्यूट टू ऑल द वुमेन्स जो कि इस मुश्किल हेक्टिक रूटीन से रोज़ाना गुजरती हैं. लिसनर्स बात कर लेते हैं इस मंथ की. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर दुनिया भर में बेहद मकबूल महीना समझा जाता है क्योंकि अक्टूबर इज द स्टार्टिंग ऑफ ऑटम, साथ ही साथ मौसम की भी तब्दीली इसमें रवा दवा होती है. और अगर सेकेंडली देखा जाए तो अक्टूबर में वर्ल्ड बेस्ट सेलिब्रेशंस भी होती हैं, जैसे कि हेलोवीन, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. वेल, अगर इसके अलावा हम देखें तो अक्टूबर और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से फेमस है, जिसमें आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे. सो अक्टूबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हो चुका है. सो मैंने सोचा कि जैसे कि हम अभी अक्टूबर के महीने में ही फॉल कर रहे हैं तो क्यों ना ज़रा इस महीने के कुछ ट्रेडिशंस को भी डिस्कस कर लिया जाए आज के इस प्रोग्राम में. सो वेल, बात करते हैं सबसे पहले ऑटम सीजन की. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वेदर चेंज हो रहा है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो थोड़ी सी बीमारियों के भी हदसात बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखें तो आप उनसे बच सकते हैं. लेकिन ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मौसम की तब्दीली को एक प्लेजेंट चेंज के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इससे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली कंट्रीज में होती है गर्मी. सो जैसे ही अक्टूबर आता है तो गर्मी की वो जो एक लहर होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक साइन मिल जाता है कि अब स्टार्ट होने लगी है फाइनली सर्दी. इसी तरह से फिर न्यू लीव्स, इसके अलावा प्लांट्स और वो तमाम चीज़ें आपको इस तरफ याद दहानी करवाती हैं कि अब ऑटम सीजन आ चुका है. सो इसके ऊपर मजीद भी बातचीत करेंगे लेकिन अभी रिवर्ड लोग पे वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो दी लिसनर्स, फिलहाल के लिए तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना होगा. सो कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बाकी तमाम तर अक्टूबर ट्रेडिशंस को भी जरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है. हम बस यूं गए और यूं आए. सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 एफएम.
1: इट्स कमर्शियल टाइम. इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ 2055 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 140 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ. ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ. ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ. ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਪਾਣੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਲੈਟਸ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਖੋਜੋ ਜਾਂ letssavewater.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ.
2: ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਯੋਰ ਹੋਮ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੇਸ? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations! That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at...
7: You are listening 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। जय बिलिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा तालो, वो भी आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, हमारे वो तमाम तरह लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें अभी ट्यून कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बता देती हूँ, 01157100971 ये ना सिर्फ हमारा नंबर है बल्कि है एक रابطے का जरिया जो आपको हमसे और हमें आपसे मिलाता है। सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, और ये भी कि आप क्या करते करते हमें ट्यून कर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अक्टूबर में होने वाले मोस्ट फेवरेट इन्फ्लुएंशियल इवेंट्स की, सो वो तमाम तो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि जिनकी वजह से अक्टूबर ऑल ओवर द वर्ल्ड बेहद फेमस है, जिसमें सबसे पहले आता है द बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीजन। सो इसे एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट समझा जाता है क्योंकि अक्टूबर की आमद से ना सिर्फ मौसम में तब्दीली आती है बल्कि कभी कभी तो लोगों का मूड भी इससे काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है। वेल लिसनर्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई मौसम चेंज हो तो आपको भी ऐसा लगने लगे कि आपके मूड में सर्टेन किस्म की तब्दीली रोनुमा हुई है? वेल लिसनर्स, अगर आपने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस किया है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो अब हम ज़रा बात कर लेते हैं मज़ीद अक्सर दूसरे इवेंट्स की जो कि अक्टूबर में मुनक़िद हुए हैं या जिनकी वजह से अक्टूबर बेहद फेमस है। सो अक्टूबर के महीने में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। सो इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड सेकेंडली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस।

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक मखसूस दिन के तौर पर मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. वहीं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को भी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है. सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक बीच में मनाया जाता है. इसका असल मकसद बेसिकली ये होता है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर से आगाह करना. उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल भी मालूम नहीं होते. उन्हें सेल्फ एग्जामिन करना सिखाना, इसका बेसिकली मकसद ये भी होता है कि आप उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करें. दुनिया भर में पिंक रिबन जैसी सेंसेशन को इसका साइन समझा जाता है और इसे खवातीन के लिए एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जहाँ अवेयरनेस फैलाई जाती है उन तमाम तर जगहों पर जहाँ लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है. इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस आती है और वो खुद को एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर उनके अंदर वो तमाम तर सिम्टम्स पाए जाएं तो वो बर वक्त अपना चेकअप करवा सकते हैं. क्योंकि कहा जाता है कि जब आप बर वक्त इलाज करवा लेते हैं तो आप बड़े बड़े खतरात से बच सकते हैं. अब सेकेंड इंसिडेंट की बात करते हैं जो कि अक्टूबर के महीने में मुनक्किद होता है, विच इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. सो ये दिन हर साल 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है. इसका बेसिकली मकसद जहनी बीमारियों से जुड़ी दुनिया भर के खौफ शर्म इसको ख़त्म करना है. लोगों को ये सिखाना है कि जहनी सेहत पर बात करना कमज़ोरी नहीं होता बल्कि बेहतरी की तरफ एक पहला कदम होता है. अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक जिस्मानी बीमारी है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का असर सिर्फ और सिर्फ आपके जिस्म पर नहीं बल्कि जहन पर भी होता है. इमोशनल शॉक, कैंसर की खबर सुनते ही मरीज अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. ट्रीटमेंट का स्ट्रेस और इसके साथ साथ आजकल के डॉक्टर कैंसर के इलाज के साथ साथ जहनी काउंसलिंग भी करते हैं क्या. ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उस चीज़ से फाइट किस तरह से करेंगे. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग.

So well listeners, ये तो हो गए कुछ serious events जो कि अक्टूबर में मुनाकिद होते हैं. अब हम जरा बात कर लेते हैं some fun loving entertainment की जो कि अक्टूबर में मुनाकिद होती है. लेकिन उससे पहले जहाँ हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की, तो वही एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, We Fell in Love in October. So आइए सुनते हैं ये ट्रैक और ट्रैक के उस पार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ फेस्टिवल्स को.

सुबह लिसनर्स, अब से बात कर लेते हैं अक्टूबर से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत से फेस्टिवल की, जिसे दुनिया भर में बहुत ही जोश और खरोश से मनाया जाता है। सो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ हेलोवीन की। सो हेलोवीन पूरे दुनिया में अक्टूबर 31 को मनाया जाने वाला एक सालाना फेस्टिवल है, जो पुरानी सेल्टिक ट्रेडिशंस, क्रिश्चियन बिलीव्स और मॉडर्न कनेक्टिविटीज, इन तमाम चीज़ों का एक बहुत ही खूबसूरत सा मिक्सचर है। सो ये हर साल 31 अक्टूबर की रात को मनाया जाता है। इसका आगाज पुराने ज़माने के आइलैंड फेस्टिवल से हुआ था, जहाँ लोग हार्वेस्ट ख़त्म होने पर नए साल की शुरुआत पर जश्न मनाते थे। उनका मानना था कि इस से जिंदा होना और के दरमियान एक बहुत ही पर्दा सा बन जाता है। सो बेसिकली उनका मानना ये था कि इस रात जिंदा लोगों और उनकी सोल्स के दरमियान एक पर्दा हट जाता है। सो इसलिए उन्होंने इसका नाम हेलोवीन रखा, यानी कि ऑल हेलोस ईव। सो बेसिकली ये ऑल हेलोज ईव से निकला है, जो कि ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर से एक रात पहले के वक्त का होता है। सो बच्चे अजीबो गरीब कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों के घरों पर जाते हैं और कैंडीज टॉफीज मांगते हैं। लोग भूल चुड़ैल या फैमिली फ्रेंडली करेक्टर्स के कपड़े पहनते हैं। पुराने ज़माने में लोग ये कपड़े बुरी रूहों को डराने के लिए भी पहना करते थे। सो अगर आज के दौर में हम देखें तो हेलोवीन को लोग एक बहुत ही फन लविंग एक्टिविटी के तौर पर देखते हैं, जहां लोग कुछ न्यू, कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं थ्रू हेलोवीन। सो हेलोवीन से लोग हर साल न्यू कॉस्ट्यूम्स रेडी करते हैं, आपस में मिल मिलाप बढ़ाते हैं और उनको मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। सो दीज आर द सम ब्यूटिफुल इवेंट्स डेट हैपन इन अक्टूबर।

0: तो सर, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे अक्टूबर के, तो वहीं से आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। सो अब तक आपने गेस तो कर ही लिया होगा, लेकिन चलिए आइए मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग सीजन की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऑटम सीजन इज कमिंग, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटम सीजन्स बेनिफिट। सो बेसिकली ऑटम को हम फॉल सीजन भी कहते हैं। ये वो सीजन है जब समर की इंटेंस हीट ग्रेजुअली कम हो जाती है, वेदर थोड़ा कूल होता है और ट्रीज के लीव येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर्स में तब्दील हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन आप एक पार्क में वॉक कर रहे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, ट्रीज का कलर लीव जमीन पर गिर रहे हैं, आपके हाथ में एक गर्म कप ऑफ टी है, कितना पीसफुल ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट लग रहा है ओवरऑल। सो लिसनर्स, ऑटम सिर्फ एक खूबसूरत सीनरी का नाम नहीं है, इस सीजन को हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और डेली लाइफस्टाइल के साथ भी बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ ऑटम सीजन, वो भी वन बाय वन। सो सबसे पहले नंबर वन स्टार्ट करते हैं प्लेजेंट वेदर। सबसे पहले बेनिफिट है एक खूबसूरत बेहतरीन मौसम। समय में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो आउटडोर एक्टिविटीज काफी हद तक मुश्किल हो जाती हैं और आप इसी चीज की तरफ ध्यान देते हैं कि मोस्टली आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन ऑटम में मैनी रीजन्स में वेदर कंपेरेटिवली कूल, वार्म बल्कि कंफर्टेबल हो जाता है। इस वजह से लोग मॉर्निंग वॉक्स, साइकिलिंग, आउटडोर गेम्स और फैमिली आउटिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ऑनेस्टली प्लेजेंट वेदर में एक सिंपल सी वॉक भी इंसान के मूड को कितना अच्छा बना देती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और आप आराम से वॉक कर रहे हो, कितना पीसफुल सा लगता है, प्लेजेंट फीलिंग आती है, हल्की सी ठंडक का एहसास होता है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगता है। सो इसी तरह से बात करते हैं हम सेकंड बेनिफिट की, विच इज कॉल्ड मेंटल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। सो जैसा कि हमने बात की, अक्टूबर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का भी एक बहुत शानदार डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहीं से आजकल जैसा कि बिजी लाइफ हम सभी की चल रही है, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क प्लेस, एज अ वर्किंग वूमेन एंड एज अ वर्किंग मैन, आपको डेली बेसिस पर बहुत एक हेक्टिक रूटीन का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या फिर आप होम मेकर हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस का सामना करता है। ऐसे में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी रिलैक्सिंग सा लगता है। और वैसे भी रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि आप अगर नेचर में वक्त गुजारें तो आपको सब काफ़ी अच्छा अच्छा लगता है। सो मेरे लिसनर्स, इसी बेनिफिट को डिटेल में आप सबके साथ शेयर करती, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो अभी के लिए तो हम जा रहे हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इसी तरह से रहना है हमारे साथ, क्योंकि डायरेक्ट वापसी पर हम डिस्कस करेंगे ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑटम सीजन आप सभी के साथ। सो Stay tuned to the Fuzzle 97.1 FM. And we will be right back after a really short break.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ইংল্যান্ডে প্রকৃতি যে হারে পানি যোগান দেয়, এর চেয়ে দ্রুত গতিতে আমরা পানি ব্যবহার করছি। যদি কিছু পরিবর্তন না হয় তবে 2055 সালের মধ্যে আমরা দৈনিক 5 বিলিয়ন লিটারেরও বেশি পানির ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারি। এবং ওয়েলসে আর্দ্রতর শীতকাল এবং শুষ্কতর গ্রীষ্মকাল আমাদের পানি সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের বেশিরভাগই মনে করি যে আমরা দিনে প্রায় 30 লিটার পানি ব্যবহার করি, তবে বাস্তবে এর পরিমাণ 140 লিটারের কাছাকাছি। আমরা সবাই সহজ কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ে সহায়তা করতে পারি। বেশিক্ষণ ধরে শাওয়ার করবেন না, ফুটো হওয়া ট্যাপ বা টয়লেটগুলি মেরামত করুন, ট্যাপের পানি ছেড়ে রাখার পরিবর্তে একটি ধোয়া পাকলার বাটি ব্যবহার করুন এবং আপনার ডিশওয়াশার বা ওয়াশিং মেশিন ইকো মোডে চালু করুন। পানি মূল্যবান, এটি রক্ষা করার জন্য আমাদের সবার উচিত কম কম করে পানি ব্যবহার করা। প্রতিদিন পানি বাঁচানোর সহজ উপায়গুলো কি কি তা জানার জন্য আসুন পানি বাঁচাই, লেটস সেভ ওয়াটার সার্চ করুন অথবা letssavewater.com এই সাইটটি দেখুন।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are saying. We are playing.
8: Fazan 97.1 FM.

बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनती सांतों को खुश आमदी टेबल लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आज ज़ैनब फातिमा और आप सभी ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो फजन 87.1 FM पे। So, जैसा कि लिसनर्स हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सम बेनिफिट्स ऑफ ऑटम सीजन, सो उसमें हम सेकंड बेनिफिट पे बात कर रहे थे। सो मैं ये कह रही थी कि रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि अगर आप पार्क ग्रीन प्लेसेस में अपना ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके मूड को बल्कि आपके मेंटल वेलबींग को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी स्ट्रेस फील करें, आपने ट्राई करना है कि आप किसी आउटडोर प्लेस पे चले जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, ट्रीज के गिर्द थोड़ा सा नेचर को ऑब्जर्व कर लें, फ्रेश एयर इंजॉय करें और अपने माइंड को एक डेली रूटीन से हटकर थोड़ा सा ब्रेक दें। कभी कभी ह्यूमन खुश होने के लिए एक्सपेंसिव प्लान्स नहीं चाहिए होते बल्कि सम सिंपल मोमेंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे दिन को बना दें और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यादगार। तो अब जब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की विच इज़ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो डियर लिसनर्स, ऑटम एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट हम सभी के लिए लेकर आता है विच इज़ द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो डिफरेंट फ्रूट्स में जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट तरह के फ्रूट्स खाए जाते हैं। सो जिस तरह से हर वेदर अपने साथ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद लेकर आता है, ठीक उसी तरह से ऑटम अपने साथ लेकर आता है कुछ यूनिक वेजिटेबल्स।

इसमें अब हम बात कर लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटम के सीजन में डिफरेंट रीजन्स में कौन से डिलिशियस और न्यूट्रिशियस फ्रूट और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं. सो एप्पल, पियर्स, पम्पकिन, कैरेट्स और डिफरेंट टाइप्स के स्क्वैश की जगह पर ऑटम के पॉपुलर सीजनल फ्रूट्स हैं. ये फ्रूट ना सिर्फ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और दूसरे यूजफुल न्यूट्रिशन हम सभी को प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की. एप्पल को आप स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, कैरेट्स को सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं और पम्पकिन का आप बहुत ही ज़बरदस्त सूप बना सकते हैं. क्योंकि सीजनल फूड चूज़ करते वक्त आप लोकल एरियाज में अवेलेबल प्रोड्यूस को प्रेफरेंस दें. इस तरह आप अपनी डाइट में भी वैरायटी लेके आ सकते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स भी इंजॉय कर सकते हैं. और हाँ, हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फेवरेट फूड इंजॉय करना छोड़ दें. बैलेंस इज द की. सो ये था हमारा थर्ड बेनिफिट जो कि ऑटम अपने साथ लेकर आता है. अब हम बात कर लेते हैं द फोर्थ बेनिफिट ऑफ ऑटम सीजन विच इज द ब्यूटीफुल नेचर सीनरी. सो ऑटम नेचर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ट्रीज के लीव्स ग्रीन या येलो, ऑरेंज और ब्राउन शेड्स में तब्दील हो जाते हैं. इस चेंज की साइंटिफिक रीजन कलरग्राफी का ब्रेक डाउन होता है. सो क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स को उनका ग्रीन कलर देता है. जब ग्रीन कलर कम होता है तो लीव्स में मौजूद दूसरे पिगमेंट्स के कलर ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं. नेचर का यही प्रोसेस हमें याद दिलाता है कि चेंज लाइफ का नेचुरल पार्ट है. हर चेंज नेगेटिव नहीं होता. कुछ चेंजेस अपने साथ बहुत सारी खूबसूरती, लर्निंग और नए एक्सपीरियंसेस को लेकर आती है. सो इस खूबसूरत बात के साथ अभी अभी हमें एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है. सो हमारे एक लिसनर हैं, उनका कहना है कि उनका ये पसंदीदा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल किया जाए क्योंकि वो काफ़ी देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. सो क्यों नहीं, ज़रूर आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक. ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था.

तो लिसनर्स, दोबारा से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बीच में आप सभी की बहुत सी फरमाइशें आ गई थी जिसकी वजह से हमें उन ट्रैक्स को प्रोग्राम में शामिल करना पड़ा। वेल, उम्मीद तो करती हूँ आपको ये खूबसूरत से ट्रैक्स अच्छे लगे होंगे। सो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सम बेनिफिट्स ऑफ द ऑटम सीजन, सो अब हम फोर्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। सो ऑटम का सीज़न हमारे लिए क्या क्या खूबसूरत चीज़ें लेकर आता है, विच आई एम शेयरिंग इट टू यू। सो द फोर्थ बेनिफिट इज बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ऑटम आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक बहुत ही वंडरफुल सीजन होता है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पार्क्स विजिट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या सिंपल नेचर के साथ कुछ पीसफुल मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होती है। सो रेगुलर वॉक मसल्स को एक्टिव रखती है, हार्ट बीट को सपोर्ट करती है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करती है। और सबसे अच्छी बात यह कि एक्सरसाइज को एंजॉय करने के लिए हमेशा जिम जाना जरूरी नहीं, कभी कभी एक सिंपल वॉक भी आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा फ्रेश चेंज लेके आ सकती है। सो ये था हमारा फोर्थ बेनिफिट ऑफ द ऑटम सीजन। So now we are talking about the fifth benefit of the autumn season, which is a chance to improve your daily routine. So autumn एक अच्छा reminder भी होता है हम सभी के लिए कि हम अपनी daily routine को refresh करें summers की holidays या relax routine के बाद। कुछ लोग इस season में अपने study schedules, work routines और personal goals को दोबारा से organize करना पसंद करते हैं। आप एक सिंपल रूटीन बना सकते हैं, टाइम पर सोना, बैलेंस मील्स लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना और अपने काम को प्रॉपरली प्लान करना। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑटम आप नए स्टडी गोल्स के लिए भी आप रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, तो आप अपने पेंडिंग टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नए गोल सेट कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। वैसे भी कहा जाता है अ फ्रेश स्टार्ट हर साल नए साल के तौर पर लेना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आप किसी दिन भी अपनी रूटीन को एक पॉजिटिव चेंज में तब्दील कर सकते हैं। अब जब बात कर लेते हैं मज़ीद कुछ बेनिफिट्स की, सो ऑटम सीजन का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है फैमिली टाइम एंड कोजी मोमेंट्स। क्योंकि ऑटम एक स्पेशल चार्म उसके कोजी मोमेंट्स में ही होता है। सो घर में फैमिली के साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फेवरेट स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं, आप कोई सी भी बुक रीड कर सकते हैं या फ्रेंड के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। सो इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ को स्पेशल बनाती हैं। वेदर थोड़ा कूल हो तो वार्म ड्रिंक्स और होममेड रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। सवाल लिसनर्स, यहीं पर आप सभी के लिए एक सवाल मेरे माइंड में आया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी से पूछ लिया जाए। सो आप अपने ऑटम सीजन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आप हर साल ऑटम के आगाज में वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो खुद के अंदर लेकर आते हैं, अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं और अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं। अब आप इस सवाल का जवाब किस तरह से अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो उसके लिए आप 01157100971 इस नंबर पर जा सकते हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ हमारा व्हाट्सएप नंबर है बल्कि है एक ऐसा पाथ जो आपको हमसे और हमें आपसे कनेक्टेड करता है। सो जल्दी से जाइएगा और जाके मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। वेल, अगर मैं आपसे अपना डिस्कस करूं या फिर अपना शेयर करूं कि मैं किस तरह से ऑटम को सेलिब्रेट करती हूं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस सीजन में मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, सो विच इज अ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करना, अगेन स्टूडियो आना, तो थोड़ा सा मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है। और प्लस जब इस तरह का कोजी वेदर हो तो आपका दिल करता है कि आप बस आराम करें, सुकून करें और आपको बिल्कुल भी हार्ड वर्क ना करनी पड़े। सो यार मेरे लिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल वॉक करूँ तो मुझे वॉक करने में बेहद मजा आता है। और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं ऑटम में ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ, पार्क में जाऊँ, कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करूँ और नेचर को ऑब्जर्व करूँ। क्योंकि मुझे सेकेंडली फोटोग्राफी का बेहद शौक है, सो मैं हमेशा ऑटम में यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करूँ। अब वो पिक्चर्स किसी

सो या अब हम लास्ट अपना बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द फोटोग्राफी एंड क्रिएटिविटी. अगेन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से ऑटम सीजन को सेलिब्रेट करती हूँ थ्रू फोटोग्राफी, सो यहाँ पर भी यही है कि अगर आपको फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन या आर्ट का शौक है तो ऑटम आपके लिए एक इंस्पिरेशन, एक वंडरफुल सोर्स हो सकता है, क्योंकि गोल्डन लीव्स, सॉफ्ट सनलाइट, कलरफुल ट्रीज और नेचर के डिफरेंट टेक्सचर ब्यूटिफुल फोटोग्राफ्स और वीडियोज के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं. आप नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं, ऑटम थीम्स रील्स बना सकते हैं, पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं और सबसे मजे की बात, आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक भी पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ. और क्रिएटिव होने के लिए एक्सपेंसिव कैमरा जरूरी नहीं, आप अपने सिंपल मोबाइल फोन से भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं. कभी कभी क्रिएटिविटी का बेस्ट पार्ट पिक्चर लेना नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना होता है. समय लिसनर्स के साथ ही ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा. सो डियर लिसनर्स, जाते जाते एक और बात कर लेती हूँ, जैसे कि अब इस टॉपिक को हम एंड कर रहे हैं. सो ऑटम एंजॉय करते वक्त आपने अपनी हेल्थ का भी भरपूर ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभार होता है कि टेम्परेचर चेंज होने पर आपकी डिफरेंट क्लॉथिंग चेंजेस भी बेहद जरूरी होते हैं. सो पानी पीना कंटिन्यू रखें, बैलेंस डाइट लें और आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान अपने कंफर्ट और सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि कुछ लोगों को सीजनल एलर्जीज भी होती हैं, स्पेशली जब हवा में पोलन या फिर फॉलन लीव से रिलेटेड इरिटेंट मौजूद हों. अगर आपको भी ऐसा लगता है सो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि मैंने सोचा जैसे कि हम अक्टूबर से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेडिशंस की, डिफरेंट इवेंट्स के जो कि अक्टूबर में मुनक्किद हुए हैं. सो साथ ही मेरे माइंड में आया कि जहां अक्टूबर स्टार्ट हुआ है वहीं ऑटम भी स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना चाहिए. उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा. अगर इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का आपका हो सवाल तो आप हमसे 01157100971 के थ्रू कर सकते हैं. साथ ही साथ ये कि आप अपना परसेप्शन ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके नज़दीक ऑटम की सबसे बेस्ट बात क्या है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात जो आपको ऑटम की नहीं पसंद, सो डू लेट मी नो, हो सकता है कि हम उसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट कर सकें. सो जी फिलहाल के लिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पर हम स्टार्ट करेंगे अगला सेगमेंट जो कि है मेरा आपका हम सभी का फेवरेट, विच इज द स्पाइस किचन.

किसी का भी मूड नहीं लग रहा, वही बहाने कर रहे हैं। भाई मैं एक बात बताऊं, इनको ना निकाल के घसीट के ही लाना पड़ेगा। बट साहब बस चले, मैं तो

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की मेजबान आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो 87.1 FM पे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो 87.1 FM है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, और फिर प्रोग्राम में शामिल किया जाता है एंटरटेनमेंट का फुल डोज। सो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हमारे लिसनर्स बोर भी ना हो और एंटरटेनमेंट साथ ही साथ मालूमात भी मिलती रहे। जैसा कि अभी प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जाने पढ़ने का, विच इज कॉल्ड स्पाइस किचन, जहां हर दिन मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार सी चटपटी सी रेसिपीज, एंड द बेस्ट थिंग इज ऐसी रेसिपीज जिनको हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई करते हैं, 5-star होटल्स में ट्राई करते हैं, लेकिन हम उन रेसिपीज को घर पर ये सोच कर ट्राई नहीं करते कि मे बी इट्स डिफिकल्ट टू कुक या फिर हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। लेकिन माय लवली डिवर्स, आप सभी को बताती चलती हूँ कि इन रेसिपीज को ट्राई करने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी होस्ट आपकी दोस्त ज़ैनब फातिमा हर दिन आपके लिए लेकर आती है कुछ ऐसी रेसिपीज जो कि ना सिर्फ चटपटी हों बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी ना हों। सो हर दिन की तरह आज भी हमारा जो मेन्यू है वो बहुत ही शानदार है, और जब मैं आपसे शेयर करूंगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो उसके लिए तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक डायरी कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की मेन रेसिपी। सो सबसे पहले तो बताइएगा कि आज हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। सो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, आप गेस करें। So the option one is achari chicken and the second option is malai boti chicken. So देखते हैं कि हमारे listeners कितना अच्छा guess करते हैं। So जितनी देर में आप अपनी notebook, copy pencil ready करते हैं उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक अदर track. So track के उस पार मैं आपसे share करूंगी ingredients. So stay tuned to the 87.1 FM.

चलिए आइए लिस्टर्स आगे बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की जानिब। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आज कौन सी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। हम आज ट्राई कर रहे हैं चिकन मलाई बूटी। सो हमारे जितने भी लिस्टर्स थे जिन्होंने गेस किया था, ये आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। सो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। सो दी लिस्टर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन 1 kg, फ्रेश क्रीम 1.5 कप, थिक योगर्ट 1.5 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रेटेड चीज 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका, और अगेन लास्टली कुकिंग ऑयल या फिर बटर 2 टेबलस्पून। सो देखा लिसनर्स, आप सभी ने हमने बिल्कुल ही सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में शामिल किए हैं, क्योंकि मैंने मेक श्योर किया था कि हम वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करें जो कि बहुत ही डिलिशियस हो, इजी टू कुक हो, ताकि आप आसानी इस रेसिपी को घर पर ट्राई कर सके बिना किसी एफर्ट्स के और बिना किसी डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट के। सो वेल लिसनर्स, ये तो थी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। आई होप आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई भी इंग्रेडिएंट हो चुका है आपसे मिस, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी तमाम तरह कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करूँ। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट हो चुकी है, अब दोबारा से सुन लेते हैं खूबसूरत सा शॉर्ट सा ट्रैक, और ये ट्रैक अभी हमारे एक लिसनर ने रिकमेंड किया है, विच इज द हसन रहीम्स मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग विशेस। सो सुनते हैं ट्रैक, ट्रैक इस बार शेयर करती हूँ आपसे रेसिपी।

चलिए आइए लिसनर्स, अब हम अपनी रेसिपी को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप नंबर वन की जानिब, विच इज द चिकन मैरिनेशन। सबसे पहले हम चिकन को मीडियम साइज क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब हम एक बाउल में योगर्ट, क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, ग्रीन चिलीज पेस्ट और सारे स्पाइसेस, इन सभी को शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, साथ ही साथ चीज, दोनों को ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को इस मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोट करके कम से कम 2 से लेकर 4 घंटे के लिए हम उसे फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास बहुत सारा वक्त है तो ओवर राइड मैरिनेशन से फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा और इनहेंस हो सकता है। क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है उतनी ही जबरदस्त रेसिपी बनती है। अब हम पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या फिर बटर गरम कर लेंगे, चिकन पीसेस ऐड करेंगे और मीडियम हीट पर अच्छे से कुक कर लेंगे। बीच बीच में हम टर्न करके इसे चेक करते रहेंगे ताकि चिकन हर तरफ से प्रॉपरली कुक हो जाए। तो जब हमारा चिकन कुक हो जाएगा, हाई हीट पर 1 से लेकर 2 मिनट तक हल्का सा कलर दे देंगे, एंड पर थोड़ा सा बटर और क्रीम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। सो ये तो मेथड वन है कि अगर आप पैन में इसे कुक करते हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप ओवन में कुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करना होगा। चिकन को लाइन बेकिंग ट्रे पर रखकर अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25 मिनट के लिए आप बेक कर ले पीसेस का साइज के मुताबिक। जरूरत पर एंड में आप 2 से 3 मिनट इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। चिकन का इंटरनल टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो इस तरह से इन दोनों तरीकों को फॉलो करके आप बना सकते हैं मजेदार सी मलाई बोटी चिकन। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ सॉफ्ट गार्लिक नान की रेसिपी, क्योंकि मलाई बोटी इनकम्प्लीट है विदाउट गार्लिक नान। सो गार्लिक नान बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा 2 कप, योगर्ट 1.5 कप, मिल्क या फिर आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से लेकर 1/2 कप। इंस्टेंट आप इसमें शुगर भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, नमक आप 1.5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं या फिर हस्बे जरूरत, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, गार्लिक आप इसमें बिल्कुल चॉप्ड करके 1 से 2 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं और बटर भी 1 to 2 टेबल स्पून और लास्टली फ्रेश कोरिएंडर 2 टेबल स्पून। सो अब मैं आपसे मेथड शेयर कर देती हूँ किस तरह से आप ये जबरदस्त सा गार्लिक नान घर पर बना सकते हैं। सो सबसे पहले आप मैदा, यीस्ट, शुगर और सॉल्ट इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, योगर्ट ऑयल और मिल्क ऐड करेंगे, सॉफ्ट डो बना लेंगे। लिक्विड ज़रूरत के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी डो ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। सो डो कवर करके आप 1 घंटे के लिए उसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। डो को 4 से 6 पोर्शंस बनाकर आप कट कर लें और फिर नान की शेप दे दें। आप गर्म तवे पर दोनों साइड्स कुक कर लें जब तक ब्राउन स्पॉट्स आ जाए। बटर में गार्लिक और कोरिएंडर मिक्स करके गरम नान पर ब्रश कर दें। सो इस तरह से आपका जबरदस्त सा गार्लिक नान हो जाएगा इंस्टेंटली घर पर तैयार विदाउट एनी एफर्ट। अब हम अपनी इस रेसिपी को मजीद कंप्लीट करने के लिए साथ में बनाएंगे मिंट रायता, क्योंकि मलाई बोटी चिकन इनकम्प्लीट है जब तक उसके साथ आप कोई भी चटपटी सी डिप ना ट्राई करें। सो इसको बनाने के लिए हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए मैं भी वो आपसे शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट 1 कप, फ्रेश मिंट 1.5 कप, कोरिएंडर 1.5 कप, ग्रीन चिलीज 1 अदद, रोस्टेड क्यूमिन 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत, हस्बे जायका और पानी 1 से लेकर 2 टेबल स्पून इफ नीडेड। सो अब किस तरह से हम मिंट चटनी को तैयार करेंगे, मिंट, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, योगर्ट को विस्क करेंगे, ग्रीन पेस्ट शामिल करेंगे और नमक और क्यूमिन मिक्स कर लेंगे। सर्व करने से पहले आप इसे फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं, इससे ये होगा कि वो बहुत ही चटपटी और स्पाइसी बनेगी। लास्टली मैं आपसे बारबेक्यू सैलेड के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, जो कि है 1 अनियन,
एक क्यूकम्बर, टू टोमेटोज, वन कैरेट, लेमन जूस, वन टेबल स्पून, पिंच ऑफ नमक एंड ब्लैक पेपर. सो सब वेजेस को वॉश करके स्लाइस करेंगे, उसके ऊपर लेमन स्क्वीज कर देंगे और आपका मजेदार सा सैलेड हो जाएगा तैयार. सो डिलीशियस, ये थी हमारी आज की जबरदस्त सी रेसिपी. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. सो रेसिपी को लास्ट में आपने किस तरह से गार्निश करना है आइए मैं आपको बताती हूँ. सो आप सिंपली एक प्लेट ले सकते हैं जिसमें आप रख सकते हैं गार्लिक नान, साथ ही साथ एक ट्रे में मलाई बूटी चिकन और साथ ही मिंट चटनी, क्योंकि मिंट चटनी के बिना तो टेस्ट बिल्कुल अधूरा है और गार्लिक नान आपकी मलाई बूटी चिकन को मजीद कॉम्प्लीमेंट कर देगा. सो आई थिंक सो इट्स द बेस्ट एंड द फुल मील फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ये मील बहुत ही जबरदस्त है. सो दे लिसनर्स एंड माई लवली डिवाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपी. आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी. इस हवाले से अगर आपका हो कोई भी सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि है 0115 7190971. सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज जो आपको ठीक तरीके से समझ ना आई हो. साथ ही साथ ये कि आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि मजीद नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आऊँ.

सोनी लिस्टर जिति के साथ ही आज के रीवा डायलॉग का वक्त हुआ जाता है खत्म। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हो कोई भी सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो सो डू लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आपके लिए दोबारा से रिपीट कर दूँ। एक बार फिर से आप सभी के लिए बताती चलती हूँ कि 0115710971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें radiofaza.co.uk की वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस हासिल हो बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी रुकावट के लिए आप हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप के साथ। सो मार्क योर कैलेंडर्स, हम कल मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इस दिन को बनाइएगा सबसे ज्यादा खूबसूरत, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल। सो इसी के साथ ही टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जाते जाते आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक प्ले करती चलती हूँ। सो आप इस ट्रैक को एंजॉय करें और अपनी आरजे को दें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सब

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

जी मेरे अजीज, हमें मौसम की बातें भी होंगी, अपनों की यादें भी हो ताज़ा हो गई, और अब बात करते हैं रुख जिंदगी की तरफ। अब ज़रा गुफ्तगू करते हैं जिंदगी की तरफ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात कर शेयर करना चाहूँगा जिसका मतलब हम सब से, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारा पेशा कुछ भी हो, और हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, क्या आपने कभी गौर किया कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई चाहता है कि लोग उसकी कामयाबी को सराहें, कोई चाहता है कि लोग उसके लिबास की तारीफ करें, कोई चाहता है कि लोग उसकी बातों से मुतासर हों, और कोई इस कोशिश में रहते हैं कि लोग उसे कामयाब इंसान समझें। लेकिन तमाम कोशिशों के दरमियान एक सवाल बहुत अहम है, क्या हम खुद अपने आप से मुतमईन हैं? क्या हम रात को सोने से पहले अपने दिल को ये कह सकते हैं कि आज मैंने किसी के साथ ज्यादा नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल नहीं दुखाया, और अपनी जिम्मेदारियों को अपनी इस्तात के मुताबिक निभाने की कोशिश की? मेरे ख्याल में इंसान की असल कामयाबी का आगाज़ यहीं से होता है। दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हर वक्त आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन आप अपने किरदार को कैसा बनाते हैं, अपने फैसले कैसे करते हैं, और दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसमें आपका किरदार ज़रूर होता है। एक खूबसूरत लिबास पहनना अच्छी बात है, और अच्छी गाड़ी खरीदना भी खुशी की बात है, अपने कारोबार को तरक्की देना, अपना घर बनाना, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, यह सब ज़िंदगी के अहम मकासद हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ अगर इंसान के अंदर आजी ना हो, गुफ्तगू में एहतराम ना हो, दूसरों के लिए गुंजाइश ना हो, और दिल में शुक्रगुजारी ना हो, तो बहुत सी कामयाबियों के बावजूद ज़िंदगी में एक कमी बाकी रह जाती है।

आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता, और ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके वसाइल महदूद होते हैं मगर उनके पास बैठकर दिल को इत्मीनान महसूस होता है। उसकी वजह यह कि सुकून सिर्फ चीज़ों की कसरत से नहीं आता, सुकून इस बात से भी आता है कि हम अपने पास मौजूद नेमतों को कैसे देखते हैं और दूसरों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। तो आज अपने लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, किसी को जवाब देने से पहले एक लम्हा रुक जाइए, गुस्से में कोई फैसला करने से पहले सोच लीजिए, किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जिस शख्स के रवैये से आपको तकलीफ पहुंची है वो खुद भी किसी परेशानी से गुजर रहा हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप हर गलत रवैये को बर्दाश्त करें बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने हक की हिफाजत करते हुए भी अपने अखलाक को हाथ से ना जाने दें। और एक बात याद रखिएगा, माफ करना हमेशा कमजोरी नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान

रखिए, रेडियो आपका साथी है लेकिन आपकी हिफाजत सबसे अहम है। आपके साथ हूँ मैं मुजफ्फर हैदर, रेडियो फजा FM 97.1। हमारी कोशिश है कि आपके दिन में सिर्फ आवाज़ शामिल हो बल्कि ऐसी बात भी शामिल हो जो आपको अपने साथ लेकर जाए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। तो आज की खूबसूरत बात है कि रिश्तों को वक्त दीजिए,

अच्छा जी, मेरे बहुत प्यारे सामने जिंदगी की बातें हो रही थी, रिश्तों का जिक्र था अपना कि मोहब्बत की बात बहुत हो रही थी, उसी गुफ्तगू में एक बात बार बार सामने आ रही थी कि जिंदगी असल खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में छुपी होती है। कभी किसी का अच्छा सा पैगाम, कभी किसी अपने की आवाज़, कभी किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात, और कभी कोई ऐसा गीत जो सुनते इंसान को अपने माजी की किसी खूबसूरत याद में ले जाए। और गीतों में भी एक अपनी एक दुनिया होती है, बाज़ औक़ात कोई गीत सुनाई देता है तो बचपन याद आ जाता है, कभी स्कूल के दिन जहन में ताज़ा हो जाते हैं, और कभी दोस्तों के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आते हैं, और कभी कोई ऐसा वक्त याद आता है जब जिंदगी बहुत सादा हुआ करती थी, जिम्मेदारियाँ कम थी और खुशी होने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों ना आज की इस महफिल में गुफ्तगू के साथ मौसीकी का रंग भी शामिल किया जाए। आखिर आपने भी तो अपने कामों के दरमियान कुछ देर सुकून के लम्हात गुजारने हैं, अपने जहन को थोड़ा ताज़ा करने के लिए इस मसरूफ दिन में अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। तो मेरे अजीज सामीन, आवाज़ का सफर जारी रहेगा, बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत। आप अपनी जगह आराम से बैठे, गाड़ी में सफर करें तो अपनी तवज्जो सड़क पर रखिए और रेडियो फजा एफएम 97.1 के साथ इस लम्हे को खुशगवार बनवाइए। लीजिए जनाब, अब इजाजत दीजिए इस खूबसूरत गीत को, ये कि आपकी समातों तक पहुंचे, और हम मिलते हैं गीत के बाद कुछ नई बातों, नए ख्यालों, नई जिंदगी के एक और खूबसूरत मौजू के साथ। कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1, और मैं हूं आपका अपना

जी तो मेरे प्यारे सामीन वापस आ चुके हैं हम एक मरतबा फिर आपकी अपनी आवाज़ आपके अपने रेडियो स्टेशन फ़ाज़ा 97.1 FM पे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा और अगर आप इस दौरान अपने काम में मसरूफ थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में काम भी ज़रूरी है और काम के दरमियान चंद लम्हे अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है। मैं हूँ आपका होस्ट आपका मेज़बान और आपके साथ बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं, बहुत से मौजूदात हैं जिन पर गुफ्तगू करना है और कुछ ऐसी बातें जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेंगी, कुछ ऐसी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें, कुछ ऐसी जिन्हें सुनकर आप कहेंगे कि वाकई ये तो मेरे दिल की बात है। अच्छा जी, एक बात बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शख्स से मिले हों, उसने आपसे सिर्फ 2-4 मिनट बात की हो लेकिन उसका अंदाज़ा उसके अल्फाज और उसका रवैया आपके जहन में रह गया हो, आप काफ़ी अरसे तक उस शख्स को याद रखते हो हालांकि उसने आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, बस उसने आपको इज्जत दी थी, आपकी तवज्जो से बात सुनी थी और आपको ये एहसास दिलाया था कि आपकी बात अहम है। और कभी इसके बिल्कुल बरअक्स भी हुआ होगा, कोई शख्स कुछ कह गया, बड़े बड़े दावे कर गया लेकिन उसके रवैये ने आपके दिल में कोई अच्छी जगह ना बनाई। इससे मालूम होता है कि इंसान की शख्सियत सिर्फ उसके अल्फाज से नहीं बनती, उसके रवैये से ही बनती है। देखिए, गुफ्तगू करना एक फन है लेकिन किसी को तवज्जो से सुनना भी एक फन है। हम में से बहुत से लोग बात करते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि अगला जवाब क्या देना है, अपनी बात को किस तरह बेहतर साबित करना है, दूसरे शख्स को की बात में कहाँ गलती निकाली है, लेकिन कभी सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। हालांकि बात वक्त किसी इंसान को आपके मशवरे की जरूरत होती है, उसे सिर्फ एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसकी बात सुने, उसे दरमियान में रोके नहीं, उसके जज्बात का मजाक ना उड़ाए और उसे ये महसूस ना करवाए कि उसकी परेशानी को कोई अहमियत नहीं रखती। ये वजह कि हमें अपने ताल्लुकात में सिर्फ बोलने की सलाहियत नहीं, सुनने का हौसला भी पैदा करना चाहिए। हर इख्तिलाफ लड़ाई का सबब नहीं होना चाहिए, हर इख्तिलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। आप किसी से इख्तिलाफ रखते हैं तो रखिए, अपनी राय जरूर दीजिए लेकिन सामने वाले की इज्जत भी बरकरार रखिए। किसी की बात से इत्तेफाक ना करना आपका हक है लेकिन उसकी तोहीन करना आपका हक नहीं है। मेरे अजीज सामीन, यही उसूल घर में भी लागू होता है। शोहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो, वालदैन औलाद के दरमियान सोच का फर्क हो, दोस्तों में किसी मामले पर नाराजगी हो या काम की जगह पर किसी साथी से इख्तलाफ हो और गुफ्तगु में एहतराम बाकी है तो बहुत से मसाइल को आगे बढ़ने से पहले हल किया जा सकता है। कभी एक नरम जुमला के बड़े तनाजे को खत्म कर देता है, कभी एक माजर किसी पुरानी नाराजगी को कम कर देती है और कभी किसी की बात मानने से ज्यादा अहमियत होता है कि आप उसकी बात समझने की कोशिश करें। तो आज के इस महफिल से एक बात अपने साथ ले जाइए, अच्छा बोलने की कोशिश जरूर करें लेकिन ऐसा इंसान बनने की कोशिश भी करें जिससे दूसरे लोग बात करते हुए खुद को महफूज, काबिल एहतराम और मुतमईन महसूस करें, क्योंकि इंसान की अच्छी गुफ्तगू वो नहीं है जो सिर्फ सुनने में खूबसूरत लगे बल्कि वो है जिसके बाद दूसरे शख्स के दिल में आपके लिए इज्जत बाकी हो। चलिए जनाब, इस खूबसूरत ख्याल के साथ बात को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ ताल्लुकात का नाम नहीं है, उसमें ख्वाब है, मकासद है, मेहनत है, कामयाबी है, नाकामी है और इस सब के दरमियान अपने आप को संभाल कर रख के आगे बढ़ने का नाम है। मेरे जी समीन, अब जरा बात करते हैं वक्त की, वक्त के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि हम सब के पास दिन के 24 घंटे होते हैं लेकिन इन 24 घंटों को इस्तेमाल करने का अंदाज हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। वही शख्स अपने इन 24 घंटों में अपनी तालीम मुकम्मल करता है, कोई अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है, कोई घर की जिम्मेदारियां निभाता है, कोई नई महारत सीखता है और कोई अपने खानदान के लिए मेहनत करता है और कोई वक्त का एक बड़ा हिस्सा सोचने में गुजार देता है कि उसे जिंदगी में करना क्या है। या एक बात समझने की हर शख्स के हालात एक जैसे नहीं होते, किसी के पास सहूलतें ज्यादा हैं, किसी के पास कम, किसी को खानदान की मदद हासिल होती है, किसी को अपने फैसले खुद करने पड़ते हैं, किसी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते आसान होते हैं और किसी को एक छोटे से मकसद के लिए भी कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी कामयाबी को देखकर अपने हालात को हकीर समझना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अपने हालात को समझने का मतलब ये भी नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अगर हमारे पास एक घंटा है तो इस घंटे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर हम रोजाना कोई नई महारत सीख सकते हैं तो उसे सीखें। अगर हमारी गुफ्तगू कमजोर है तो उस पर काम करें। अगर हमें अपने काम में मजीद महारत की जरूरत है तो मश्क करें। और अगर हमारी जिंदगी में बेतरतीबी है तो एक छोटा सा मामूल बनाएं। कामयाबी के लिए हर रोज कोई बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं होता, कभी रोजाना 20 मिनट मुताला करना, कभी एक सफ़ा लिखना, कभी कोई नया सबक सीखना, कभी अपनी गलतियों का जायजा लेना और कभी अगले दिन की तैयारी करना भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकता है। असल मसला अक्सर ये नहीं होता कि हमें मालूम नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि मसला ये होता है कि हम जानते हुए भी आगाज़ को कल पर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि पीर से शुरू करेंगे, अगले महीने शुरू करेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तो शुरू करेंगे, जब वक्त ज़्यादा होगा तो शुरू करेंगे, और फिर दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं और वो काम वहीं रह जाता है जहाँ हमने उसे छोड़ा था। इसलिए अगर आप किसी अच्छे मकसद के बारे में सोच रहे हैं तो उसका एक छोटा सा कदम उठाइए। आपको पूरा रास्ता एक दिन में तय नहीं करना, आपको सिर्फ अपने सफर का आगाज़ करना है। अगर तालबिल में तो आज का सबक आज मुकम्मल करने की कोशिश करें, अगर मुलाजमत करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में निभाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कारोबार करते हैं अपने ग्राहकों के साथ अपने मामलात बेहतर बनाएं। अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं तो उसकी मश्क जारी रखिए। अगर आपकी घर पे कोई जिम्मेदारियां हैं तो याद रखिए घर को संभालना भी एक अहम काम है, इसकी कदर कीजिए, अपने काम को मामूली मत समझिए। यही शामिल करेंगे एक खूबसूरत सा गाना
جو آپ کو 90s کے دور میں لے جائے گا. سنیے گا اور سر دنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

वेलकम बैक जी। तो मेरे बहुत ही प्यारे सामीन वापस आ चुके हैं हम एक मरतबा फिर रेडियो फजा FM 97.1 पर, और मैं हूँ आपका अपना हुसैफा हैदर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत गीत को इंजॉय किया होगा। आप जहाँ के भी हैं, घर में हैं, दफ्तर में हैं, अपने कारोबार में मसरूफ हैं, या किसी सफर में, या अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम दे रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि आपके इस मसरूफ दिन में आपके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लाई जाए, आपके लम्हात को खूबसूरत बनाया जाए और आपके दिल को एक खुशगवार एहसास दिया जाए। अच्छा जी, हम भी हम बात करते हैं कि ज़िंदगी की वक्त की अहमियत की, अपने मकासद की, और इसकी बात इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात अपने लिए सुकून के चंद लम्हे कैसे निकाल सकता है। तो आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होना यकीनन ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को महसूस करना भी ज़रूरी है। सिर्फ काम करते रहना एक ज़िम्मेदारी से दूसरी ज़िम्मेदारी की तरफ भागते रहना, एक हदफ हासिल करके फ़ौरन दूसरे हदफ के पीछे लग जाना, ये सब अपनी जगह, लेकिन कभी अपने इर्द गिर्द भी देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं। सुबह का सूरज निकलता है, शाम को आसमान के रंग बदलते हैं, बारिश होती है तो मट्टी खुशबू दिल को भी भली लगती है, सर्द हवा चलती है तो मौसम का अपना एक अलग एहसास होता है, और कभी किसी अपने से अचानक मुलाकात हो जाए तो पूरे दिन की थकन दूर हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं से बनती है। हम अक्सर खुशी को मुस्तकबिल के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो खुश होंगे, जब मेरा कारोबार कामयाब हो जाएगा तो खुश होंगे, जब अपना घर बन जाएगा तो खुश होंगे, जब फलां मकसद हासिल हो जाएगा तो ज़िंदगी का लुत्फ उठाऊंगा। लेकिन इस दौरान जब वक्त गुजर रहा होता है, जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं और जिन्हें नेमतें हमें पहले से हासिल होती हैं, हम कभी भी उन पर तवज्जो देना भूल जाते हैं। मेरे अजीज सामीन, अपने मकासद ज़रूर बनाइए, आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत भी कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ मुस्तकबिल के किसी एक दिन के साथ मशरूत न कीजिए। आज भी ज़िंदगी है, आज भी आपके पास कुछ नेमतें हैं, आज भी किसी से मोहब्बत करने, किसी की मदद करने, कुछ नया सीखने और अपने दिल को मुतमिन करने का मौका मौजूद है। और खुश रहने का मतलब ये भी नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, हकीकत तो यह कि हर इंसान किसी न किसी मामले में फ़िक्रमंद होता है। किसी को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, किसी को ख़ाबते ख़ानदान की, किसी को रोज़गार की, किसी को तालीम की, और किसी को अपनी ज़िंदगी के ऐसे फ़ैसलों की जिनके बारे में अभी तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सका, लेकिन इन तमाम हालात में इंसान अपने लिए उम्मीद का एक रास्ता जरूर तलाश कर सकता। कभी किसी अच्छे दोस्त से बात कर लीजिए, कभी अपने वालदैन के पास बैठ जाइए, कभी अपने कामों की फहरिस्त बना लीजिए और एक एक करके उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। कभी मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखकर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को वक्त दीजिए, आप देखेंगे ज़िंदगी की में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। और हाँ, मोबाइल फ़ोन की बात निकले तो ये भी एक दिलचस्प मौजू है। आजकल तो ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल साथी बन चुका है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल किसी का पैगाम आ गया या नहीं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किसी ने नई तस्वीर लगाई है, किसी की वीडियो वायरल हो गई है, तो कौन कहां गया और किसी ने क्या खरीदा। फिर रात को सोने से पहले भी एक मरतबा मोबाइल देखना जरूरी महसूस होता है, चाहे आंखें नींद से बोझल हो रही हो। अब सवाल यह कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल फोन हमारी तवज्जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमें मैसेज करके। हमारा मैसेज के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0115 7100971। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए। याद रहे कि आप हमें लाइव सुनना चाहते हैं तो वेबसाइट मौजूद है www.radiofaza.co.uk, एप स्टोर या एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए रेडियो फजा 97.1 FM। पर्पल बैकग्राउंड के साथ सिल्वर गोल्डन कलर का माइक सामने नजर आएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, टेक्नोलॉजी बजात खुद बुरी चीज़ नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन से आप तालीम हासिल करते हैं, कारोबार कर सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से रابطہ कर सकते हैं, अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं और अपने लिए रोज़गार के कई नए मौके भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ का फ़ायदा उसी वक्त है जब हम उसे मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करें। इसलिए कभी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी देखें, कितने वक्त में आपने कुछ सीखा, कितने वक्त में किसी ज़रूरी काम को मुकम्मल किया और कितना वक्त सिर्फ गैर ज़रूरी तौर पर स्क्रीन देखते हुए गुजर गया। मकसद ये नहीं कि आप मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दें, मकसद सिर्फ ये कि आप अपने वक्त पर अपना इख्तियार बरकरार रखें। मेरे ख्याल में यही बात ज़िंदगी के दूसरे मामलों पर भी लागू होती है। पैसा कमाइए लेकिन पैसे को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ना बनाइए। कामयाब होइए लेकिन कामयाबी के साथ आजी भी रखिए, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए लेकिन किसी को पीछे धकेल कर नहीं। अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए लेकिन दूसरों की इज्जत को भी अहमियत दीजिए, क्योंकि बिलाखिर इंसान को सिर्फ ये याद नहीं रखा जाता कि उसने ज़िंदगी में क्या हासिल किया, बल्कि ये भी याद रखा जाता है कि दूसरों के साथ कैसा था, उसकी गुफ्तगू कैसी थी और उसके वजूद से लोगों को आसानी मिलती थी या परेशानी।
تو جناب یہ تھی آج کی کچھ باتیں. اب میں چاہوں گا آپ بھی اپنے دل میں اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنے وقت کو, اپنے رویے کو, اپنے تعلقات کو, یا اپنے مقاصد کے لیے اپنی کوشش کو. یاد رکھیے گا, تبدیلی کا آغاز ہمیشہ کسی بڑے اعلان سے نہیں ہوتا, کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ

0: ही एक खूबसूरत सॉन्ग शामिल करेंगे आपकी हसीन समातों की नज़र करते हैं। फजा 97.1 एफएम के साथ जुड़े रहिएगा, सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत। गीत के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, सुनते रहिए फजा 97.1 एफएम।
1: Farouk, drop that shit.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो में हूँ आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट और आपका दोस्त उस्मान खान। मेरे प्यारे तमाम सामईन को दिल की गहराइयों से खुश आमदेद जनाब। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम और मैं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके सफर का हम सफर आरसे उस्मान खान। प्यारे प्यारे सामईन, मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी शाम अच्छी गुजर रही होगी। कोई दफ्तर से घर वापस जा रहा है, कोई अपनी दुकान बंद करने की तैयारियां कर रहा होगा, कोई सफर पर अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो घर में बैठा ये सोच रहा है कि आज की शाम का वक्त किस तरह गुजारा जाए। और बोल जनाब, जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अपने रेडियो की आवाज जरा सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ वक्त के लिए आपकी तन्हाई, आपकी बोरियत और आपके सफर का साथी आपके अपना मेजबान उस्मान खान हाजिर है। लेकिन जनाब, आज प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसकी शुरुआत में ही, आगाज में ही दिलचस्प सवाल किया जाएगा आपसे, जिसका जवाब आपको जरूरी नहीं है कि सामने सामने दें, दिल में भी दे सकते हैं। वेल, समीन कभी आपने गौर किया कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोगों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? जैसे कि दोनों एक ही सड़क से गुजरते हैं, दोनों एक ही मौसम देखते हैं, दोनों के दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एक शख्स दिन को यादगार बना लेता है और दूसरा पूरा दिन गुजरने के बावजूद महसूस करता है कि आज कुछ भी खास नहीं किया। वल, ऐसा क्यों होता है, क्या फर्क है जनाब इसमें? क्या फर्क हालात का होता है, क्या फर्क किस्मत का है, या फिर फर्क इस बात का होता है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटी छोटी चीजों को कभी उस नजर से देखते ही नहीं? जरा तसव्वुर कीजिए कि आप रोजाना एक ही रास्ते से अपने दफ्तर जाते हैं। घर में एक पुरानी सी इमारत है, एक छोटा सा दरख्त, एक दुकान है जहाँ सुबह से शाम तक कोई शख्स अपने काम में मसरूफ रहता है। आप उनसे सब चीजों के पास से सैंक

ऐसी बातें जो जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी रातों रात बदल दे, लेकिन हो सकता है घर पहुंचते हुए आपके जहन में कोई नया ख्याल जरूर पैदा कर दे। सुबह नाजरीन सामीन, मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, गाड़ी चला रहे हैं तो नजरें सड़क पर रखिएगा, रफ्तार थोड़ी सी मुनासिब कीजिए और रेडियो 97.1 FM डैब के साथ इस सफर को जरा सा मुख्तलिफ बनाइए। मैं आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ड्राइव टाइम। तो इस ड्राइव टाइम में मेरे साथ साथ आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपने करना है प्रोग्राम में मैसेज या दिल चाहे तो कर सकते हैं कॉल। लाइव नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप का, उसको नोट कीजिएगा 01157100971। इस नंबर को सेव कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, वहाँ पर जाकर अपना पसंदीदा कोई भी खूबसूरत सा कलाम, कोई पसंदीदा गज़ल नज़म चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा 01157100971 पर। सो हवा के दोस्त पर लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका पैगाम खूबसूरत सा जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, जिससे तो ही तमाम तर खूबसूरत सी समाधों की नज़र हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप तक हमारे रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो उसके लिए आपने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारा साथ दे सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पर जाइए और जाकर लिखिए radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम तरह आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम कर रहा है आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में रेडियो फजा आपका साथ दे, आप कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ते के लिए या तो आप हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज छोड़ दीजिएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम आपसे खुद रब्ता कर लेगी। इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन हमारी जो है आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, रेडियो फजा 97.1 FM, इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है और इसको अपने मोबाइल फ़ोन में हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह आप जहाँ भी होंगे अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप हमें ट्यून कर सकते हैं। 24 घंटे आपको मुख्तलिफ आर्टिस्ट की आवाज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, मुख्तलिफ म्यूज़िक आपको सुनता रहेगा, अप टू डेट म्यूज़िक आप सुनते रहेंगे। और जैसे कि मैं आपको अभी एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनाने वाला हूँ, उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। पुराने को नया किया गया है, जैसे वो कहते हैं ना, ओ खैर पुरानी गड्डी दे नवे टायर। सो बस इसी तरह से गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, डीजे आयरा ने इसको रिमिक्स किया है, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। इसके उस पर करेंगे आपसे मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ, हम ये होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

All right, once again, welcome back. आ चुके लौट के वापस एक प्यारी सी सिटी के साथ. उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं. I'm your host उस्मान खान and you're listening for the 97.1 FM and Dev. Also program called Drive Time. उम्मीद है कि इस Drive Time में आप लोग मेरे पूरे तरीके से मेरा साथ देंगे और अपने होने का एहसास मुझे दिलाएंगे. जिन लोगों ने भी पहली बार 97.1 FM and Dev पर हमें ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आपका ट्यून करने का. और जो दोस्त हमारे साथ पीछे से चलते आ रहे हैं, यानी कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत से हमारे साथ हैं, आप सभी दोस्तों का भी बेहद शुक्रिया. अब हम आते हैं आज के पहले मौजू की तरफ, यानी कि आज का हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है जनाब आप पे ही से रिलेटेड, यानी कि वो हुनर जो आपके अंदर मौजूद है मगर आपने उसे अभी तक हुनर समझा ही नहीं. ऐसी क्या क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है जिसको आपने अभी तक समझा ही नहीं कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो सकती है. क्या है ना कि हमें से अक्सर लोगों के जहन में ना क्वालिटी का तस्वुर आते ही चंद चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि हम अच्छा गा सकते हैं, जैसे हम अच्छे राइटर हैं, जैसे हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, या हम अच्छा खाना बना सकते हैं, कोई खूबसूरत सी तकरीर कर सकते हैं, मतलब सो ऑन, इसी तरह की चीज़ें हमारे जहन में आती. लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ कि क्या सिर्फ यही हुनर होता है, यही क्वालिटी होती है, इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं हो सकती? चलिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ. क्या आपने कभी ये सोचा कि किसी नाराज शख्स को दो मिनट में हंसा देना भी एक क्वालिटी हो सकती है? किसी परेशान इंसान की बात खामोशी से सुन लेना भी एक क्वालिटी हो सकती है? क्या मुश्किल वक्त में घबराहट की बजाय अपने काम को तरतीब देना, क्या ये क्वालिटी नहीं हो सकती? और क्या किसी अजनबी के साथ इस अंदाज में बात करना कि वो खुद को अजनबी महसूस ही ना करे, ये भी तो एक क्वालिटी हो सकती है ना? जी हाँ, ऐसी बेशुमार क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं. लेकिन उन क्वालिटीज़ को पहचानने से पहले पहले आपके लिए खूबसूरत सी आवाज़ शामिल कर रहा हूँ. इस खूबसूरत सी आवाज़ को सुनेंगे, इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात. डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ. आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड आल्सो डैब, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.
7: 97.5.

उम्मीद है जनाब कि जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं वो खुशबाश तो होंगे और बहुत कुछ सोच के बैठे होंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि आपका हुनर सिर्फ ये नहीं कहता कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, बल्कि आपके हुनर में ये चीज़ भी शामिल होती है कि कोई शख्स आपसे नाराज़ है तो क्या आप उसे मना सकते हैं। मुश्किल वक्त में जब घबराहट होती है तो क्या उस वक्त में आप खुद को बुलंद कर सकते हैं, किसी परेशान इंसान की परेशानी को दूर कर सकते हैं या खामोशी से उसकी परेशानी को सुन सकते हैं। ये तमाम तरह वो चीज़ें हैं। अगर तो आप इस हुनर में माहिरियत रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो आप कह सकते हैं कि आप एक हुनरमंद शख्स हैं। लेकिन अगर आप में ये हुनर नहीं है तो दिल्ली बड़ी दूर है, अभी आपको बहुत सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मजीद इसको आसान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार को देखिए, रोजाना दर्जनों लोगों से मिलता है, किसी का मिजाज अच्छा होता है, किसी को जल्दी होती है, कोई कीमत पर बहस करता नजर आता है, कोई चीज़ खरीदे बगैर वापस चला जाता है। उसके बावजूद अगर वो हर नए आने वाले से अच्छे अंदाज में बात करे तो उसके अंदर लोगों को समझने और अपने रवैये को समझाने और संभालने की सलाहियत मौजूद है। हम उसको हुनरमंद कह सकते हैं। अगर एक घर में खाना बनाने वाले शख्स को देखिए, कभी मेहमान अचानक आ जाते हैं, कभी घर में मौजूद चीज़ें कम हो जाती हैं, कभी वक्त महदूद होता है, वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके सबके लिए खाना तैयार कर लेता है। ये सिर्फ खाना पकाना नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और वक्त के साथ चलना और उसके मुताबिक हल निकालना ही असल सलाहियत होती है। मजीद इसी तरह से एक ऐसा शख्स जो अपने घर में मुख्तलिफ उम्रों के लोगों के साथ रहता है, यानी कि एक कोई एज में कम है, कोई एज में ज्यादा है, बूढ़े बच्चे जवान, अगर उनके साथ रहते हैं और ऐसे कभी बच्चों की बात समझनी पड़ जाती है, कभी बुजुर्गों की जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है और कभी दो लोगों के दरमियान गलत फहमी को दूर करना पड़ती है, तो इसके अंदर अगर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि इन तमाम तर मिजाजों को समझ सकता है तो मेरा ख्याल वो एक हुनरमंद शख्स होगा। लेकिन फिर मसला यह है कि हम अक्सर अपनी इन्हीं खूबियों को मामूली समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं रोज कहता हूँ। तो जनाब बहुत सी अहम सलाहियतें इसीलिए नजर नहीं आती क्योंकि हम उन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। आप एक छोटा सा काम कीजिए, आज अपने दिन पर नजर डालिए और सोचिए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें आपको किसी की मदद करनी पड़ी, किसी मुश्किल को हल करना पड़ा या कोई फैसला करना पड़ा। हो सकता है आपने अपने किसी साथी को किसी मुश्किल में मदद दी हो सकता है कि आपने घर के काम में थोड़ी सी मुआवनत तैयार की हो, यानी कि साथ दिया हो घर वालों का, घर की कुछ चीज खरीदने में थोड़ी सी बचत कर ली हो, किसी मामले में जल्दबाजी से बचकर बेहतर फैसला किया हो। अगर तो आपने इस दिन में कोई भी एक ऐसी चीज की है तो मेरा ख्याल है कि आप बाकी हुनरमंद हैं। समय उन कामों को मामूली कहकर खत्म ना कीजिए। इनसे मामूल होता है कि आपके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं और आप इन्हें मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में यही चीजें डिस्कस मैं कर रहा था और मेरी कोशिश है कि अगर मेरे प्रोग्राम में एक भी बात एक भी बंदे की समझ में आ गई और मेरी वजह से अगर उसने अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली ले आया तो शायद मेरे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। इन तमाम दरवाजों को लेकर हम मजीद आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सी आवाज, आप सभी खूबसूरत सी समातों की नजर, इस आवाज के उस पार आपसे फिर से होगी मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिए मेरे साथ साथ। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। हनी सिंह की आवाज, ट्रैक कातिल, अमीर, आपका जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, रहिएगा मेरे साथ।

जी जनाब, उम्मीद है कि आप ये खूबसूरत ट्रैक जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब ट्रैक के बीच में आपको रुकने का मकसद ये है कि अब थोड़ा सा चले ना इख्तिताम की जानिब भी, तो सीधे रहना मैं कार जाना है। खैर जी, बात कर रहे थे कि आप कितने हुनरमंद हैं और आपने क्या क्या हुनर है, इसी हवाले से थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आएंगे अब थोड़े से नौजवानों की जानिब। अगर आप नौजवान हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी तक अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिला, मुझे मालूम नहीं कि मैं किस काम में अच्छा हूँ, तो फिर ये जरूरी तो नहीं कि आपको फौरन किसी बड़े जवाब का बड़े जवाब तक आप पहुँच सकें, ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। कभी कभार जवाब छोटे तजुर्बात से भी निकलते हैं, जैसे कि एक नई जिम्मेदारी लेकर देखिए, किसी ऐसे काम में मदद कीजिए जो आपने पहले कभी ना किया हो, बुजुर्ग से उनके तजुर्बात पूछिए, कोई मुख्तसर सी तरबियती कोर्स में दाखिला ले सकते हैं आप, यानी कि आपने आपको किसी एक चीज में लेकर जाइए, फिर आपको बेहतर पता चल सकता है। शायद आपको एक ही दिन में मंजिल ना मिले, लेकिन आपको ये तो जरूर मालूम होने लगेगा कि आप किस काम में बेहतर हैं, किसी काम में दिलचस्पी लेते हैं और किस काम को सीखने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान को हर काम में अच्छा होना जरूरी नहीं होता, जरूरी ये है कि इंसान अपनी खूबियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करे और जहाँ बेहतरी की गुंजाइश हो वहाँ सीखने से इनकार ना करे। ये था आज का शो और मुझे उम्मीद है कि आपने कोई एक बात तो मेरी जरूर फॉलो करेंगे आप। अगर आपने जहन में सोच के जवाब दीजिएगा कि वो कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपसे मदद मांगते हैं, हो सकता है वही आपकी किसी अहम सलाहियत की निशानी हो, तो थोड़ा सा सोचिए कि लोग आपसे किस तरह की उम्मीद लगाते हैं, किस तरह की आप लोगों की मदद कर सकते हैं। खर्ची जाने से पहले हम संजीदगी से थोड़ा सा बाहर आएंगे और छुट्टी देते हैं ना संजीदगी को, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, थोड़ा सा मेरे पास वक्त है तो इस थोड़े से प्रोग्राम में थोड़े से वक्त में खेल सा खेलते हैं। तसव्वुर कीजिए कि आपके घर में मौजूद चीज़ें बोल सकती हैं, अब एक दफ़ा अपने घर को जहन में लेके आई और हज़ारों चीज़ें आपके सामने आएंगी, कोई एक चीज़ आपको लगता है कि बोल सकती है, वही चीज़ें जिन्हें आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी उनसे बात करने का ख्याल नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले नंबर पर जिस चीज़ की बारी आएगी वो आपका मोबाइल फ़ोन होगा। अगर आपका मोबाइल फोन बोल सकता तो शायद कहता जनाब मुझे दिन में सैकड़ों मरतबा खोला जाता है, अगर मेरा इस्तेमाल सिर्फ वक्त देखने के लिए शुरू होता है और पता नहीं कितनी देर बाद खत्म होता है। आप एक पैगाम देखने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फिर एक वीडियो सामने आती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अचानक एहसास होता है कि आप तो एक जरूरी काम करने आए थे। अब जरा अपने घर की कुर्सी का तसव्वुर कीजिए, वो शायद शिकायत करती है कि आप मुझे सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब थक जाते हैं, वरना कभी मेरे साथ बैठकर दो मिनट सुकून से भी गुजरे हैं। अगर आपकी अलमारी में रखे कपड़े बोल सकते तो शायद हर सुबह एक ही सवाल करते, इतने कपड़े मौजूद हैं फिर भी हर रोज यही जुमला क्यों सुनना पड़ता है कि पहनने के लिए कुछ नहीं। थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े तो बारी आती है जनाब घर में लगी घड़ी की। घड़ी शायद सबसे ज्यादा हैरान होती, वो कहती मैं तो मुसलसल चलती रही हूँ, लेकिन इंसान कभी मेरे आगे भागकर कभी मुझे देखकर परेशान हो जाता है, कोई वक्त की कमी का शिकवा करता है, कोई कहता है वक्त गुजर ही नहीं रहा, और कोई बाद में सोचता है कि काश वक्त को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता। अब इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोचिए कि जूते, आपके जूते, वो शायद कहें कि हमें रोजाना बाहर ले जाया जाता है, लेकिन कभी किसी खूबसूरत रास्ते पर बिना वजह चलने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया करो, हर सफर का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही तो नहीं होता। और फिर सोचिए कि अगर आपकी चाय की प्याली बोल सकती तो शायद कहती मुझे हाथ में पकड़ कर सिर्फ पैगाम पढ़ने के लिए ना बैठा करो, कभी मेरे साथ खिड़की के पास बैठ कर बाहर का मंजर भी देखा करो। खैर ये सब फर्जी बातें हैं, मगर इनके पीछे एक दिलचस्प ख्याल मौजूद है। हम रोजाना बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपनी उतनी सी आदत के लिए इस्तेमाल करते हैं जितनी सी हमें उनकी ज़रूरत होती है, और उनके जरिए अपने रवैयों को समझने का मौका ही नहीं लेते। मोबाइल फोन हमें अपनी तवज्जो के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है, घड़ी हमें वक्त की अहमियत दिला सकती है, जूते हमें नई जगहों की तरफ निकलने का ख्याल दे सकते हैं, और एक आम सी चाय की प्याली हमें चंद मिनट अपने साथ गुजारने की याद दहानी करवा सकती है। मैं चाहता तो था कि आप इस खेल में मुकम्मल तौर पर मेरा साथ दें और
ہے کماز کا سلسلہ جاری ساری رہے, لیکن یہی گھڑی جو ہے میرے اسٹوڈیو میں جو موجود ہے یہ مجھے اجازت نہیں دے رہی, اس لیے مجھے آپ سے چاہنی ہوگی فی الحال اجازت. یہ کھیل ہم کھیلیں گے مزید کل کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں اپنے میزبان عثمان خان کو فی الحال اجازت دیجیے, اس بات کے ساتھ کہ اپنا رب کے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے میزبان عثمان خان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے جہاں پر پیار بیٹھ رہا ہے, اور با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو ہم وقت دینے کے بارے میں سوچتے تو ہیں لیکن وقت دے نہیں پاتے. یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے, ہمیشہ ریٹرن میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بہتر ہی لے کے آتا ہے, لیکن اگر اسے بہتر کام میں یوٹیلائز کیا جائے تو. ادروائز اگر آپ اس کو ضائع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس کاش اگر اور مگر یہی رہ جائے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. سو امید ہے کہ میری اس بات سے آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھیں گے. میرے تمام لسنرز سے چاہیں گے اجازت, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اس خوبصورت سی آواز کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں, کل دوبارہ ہوگی ملاقات, سیم ٹائم سیم پلیٹ فارم. تب تک کے لیے آپ کا میرا اور سب کا اللہ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
7: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
6: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
7: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
6: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station. That plays
10: foot tapping music.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music.
1: Was on 97.1, whatever.
2: For all the times that you've rang my heart, and all the clubs you got in using my name, you think you...
3: It's commercial time.
4: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते

0: नलों या टॉयलेट को ठीक करें। चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
6: रेडियो बजार 97.1 FM।
7: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
8: मंगला जो भी मंगना मेरे।
9: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रेसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: इंग्लैंड दे विच असीं पानी दी वरतों जिन्नी तेजी नाल कर रहे हां, कुदरत इस नूं उन्नी तेजी नाल नहीं पार सकती। जे कुछ ना बदलिया तां 2055 तक सानूं हर रोज 5 बिलियन लीटर तों वध पानी दी कमी दा सामना करना पै सकदा है। सर्दियां दे मुकाबले गर्मियां च पानी दी सप्लाई दा ज्यादा दबाव हुंदा है, यानी पानी दी वरतों वध हुंदी है। साडे विचों ज्यादातर सोचते ने कि असीं दिन विच लगभग 30 लीटर पानी वरतदे आं, पर असल च असीं 140 लीटर दे नेड़े आं। आओ कुछ साधारण तब्दीलियां करिए ते पानी दे बचाव विच मदद करिए। शावर विच घट समां लगाओ। लीक कर रहियां टूटियां या टॉयलेट नूं तुरंत ठीक करवाओ। लगातार चल रही टूटी दी बजाए पांडे तोन वाले बाउल दी वरतो करो, अते अपने डिशवाशर या वॉशिंग मशीन विच इको मोड दी वरतो करो। पानी अनमोल है, इस नूं बचाउण दे लई सानूं सारिआं नूं घट पानी वरतण दी लोड़ है। हर रोज पानी बचाउण दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो।
3: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा. रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ. अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें. मेरा नाम है रेडियो फजा.